एफएमएंट 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 मई 2026। प्रातः के 5:57 होने को है। मंगल ध्वनि के साथ ही हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र का प्रसारण, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

0: क्योंकि मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज और दूरदर्शन के DTH चैनल पर। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन कार्यक्रम में आज का विषय है रोशनी।
2: रोशनी, उजाला या प्रकाश, तीनों शब्दों का भाव एक ही है। अंधेरों को हराने के लिए हमें रोशनी की जरूरत होती है। रोशनी को हम जीवन का पर्याय भी कह सकते हैं। जब सब तरफ गहन अंधकार हो, तब हमें रोशनी की एक छोटी सी किरण आगे का रास्ता दिखाती है। जैसे सूर्यास्त के बाद पृथ्वी अंधकार में लीन हो जाती है, तब हजारों सितारे मिलकर भी धरती के अंधेरे को दूर नहीं कर पाते, लेकिन एक छोटा सा दिया अपनी बाती की लौ जलाकर हमारे आसपास उजियारा फैला देता है और हम अपने आसपास की चीजों को सुगमता से देख पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब घना अंधेरा होता है, तब हमारी आंखें होते हुए भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन माचिस की तीली की लौ या फिर लाइटर से उत्पन्न प्रकाश में हम अपनी जरूरत की चीजों को आसानी से देख लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमें देखने के लिए प्रकाश या रोशनी की आवश्यकता होती है। बाहरी अंधियारे को दूर करने के लिए हम कृत्रिम रोशनी का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर के अंधेरों को हराने के लिए हमें ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए, जो एक योग्य गुरु के द्वारा दिया जाना चाहिए। जब हमारे मन में ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है, तो हमारा मन रोशन होने लगता है, और जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो हमें ये संसार नए स्वरूप में नजर आता है। वास्तविक रूप से हम अपनी आंखों पर अज्ञान का पर्दा डालकर अपना जीवन ढो रहे हैं, और इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य मैं, मेरा, भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता के साथ जी रहा है। इस प्रकार की छोटी मानसिकता के साथ जीवन जीने से हम स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भूल करते हैं। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह के जाल में मनुष्य उलझता है, तब जीवन दुखी हो जाता है और हम जीवन के रास्तों से भटककर एक गहरे अंधकार में चले जाते हैं। जिंदगी को सुचारू चलाने और इंसानियत के रास्तों पर चलने

हमें अपने मय से बाहर निकलना होगा। जिस प्रकार काली अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है और धरती पर उजाला होता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने मन के भीतर के तम को हराने के लिए अपने मन में एक नई रोशनी कायम करनी होगी। यही ज्ञान ज्योति हमें सत्य की राह पर ले चलेगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, विषय था रोशनी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का।
1: अभी आप आकाशवाणी के जयपुर केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस कांड का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

अभी आप रामचरितमानस कांड का आज का प्रसंग सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में अब से थोड़ी ही देर में ठीक 6:45 पर आप सुनेंगे खेती नी बात। प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुखराम और साथियों के गाए बागड़ी लोक भजन। 7:20 पर आप सुनेंगे वातायन। वातायन के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कहानी। कहानी का शीर्षक होगा अमृत कलश और कहानीकार होंगे भरत चंद्र शर्मा। प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ दिल से। राजस्थानी लोक संगीत का प्रसारण समय होगा प्रातः 8:45। प्रातः 9:10 और प्रातः 11:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत। फिल्म संगीत का प्रसारण समय होगा 11:30। प्रातः 7:30, प्रातः 9:30 और दोपहर 12:00 से आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे

राजस्थानी लोक संगीत। शाम 7 बजे किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। रात्रि में 10 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। इसके अलावा समय समय पर आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली और जयपुर केंद्र से।

0: अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए खेती नी बात।
1: खेती नी बात हम बड़ा वाला सब किसान भाइयों बहनों सोराडे थे कि नानू भाइयों राम राम। किसान भाई देखो हमारे वर्ण टीम में अपना खेती बड़ी काम काज बड़ो पड़ी रुत हुए बस कर मौसम गर्मी में सभी रुत गर्मी में मौसम अपने भैया जी खेती बाड़ी में काम है अपने हाजे हवारे सुबह ठंडा मौसम अपन सुबह सुबह 11 बजे पहले हाजे 4 बजे बाद अपन कर सके किसान भाई क्योंकि गर्मी में अपने शरीर हाड़ हमारा भी रख क्योंकि गर्मी ने केवल पाई पहले सुख निरोगी काया अपना शरीर हाजू है तो अपना खेती बाड़ी काम टाइम अनुसार कर खेती बाड़ी नु काम अपना कहीं बीमार पड़ जाए कहीं सर्दी जुकाम थी जाए तो आप नुकसान थी अपनी सावधानी।

छाछ है, दूध दही है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, तो इसमें उपयोग भी अपन कर बहुत जरूरी है किसान भाई, क्योंकि स्वास्थ्य अब खाजू है तो अस अपन गाड़ी काम कर सके। एट समय अपने ध्यान रखो ना, खेती बाड़ी काम कर अपन घर ने बाहर निकला फोन समय या तो अपने शरीर पर कई प्रकार कपड़े या टोपी मात्र रखो जरूरी है कि भैया लू लग गई या कोई शरीर पर बुरा प्रभाव पड़े जो आप नुकसान थी एट छोटी मोटी सावधानी राखी ना काम करवो। किसान भैया जी आप खेतर खाली ही तो आना समय में अपने गर्मी की जुताई कर देवी जरूरी, क्योंकि किसान भैया गर्मी की जुताई थे घना फायदा गर्मी की जुताई करवा खेतर ने तो आ सूर्य तेज धूप थकी अपने जी जमीन में कई प्रकार दिमाग आवदाई है कीड़ा मकोड़ा है तो ही मरी जाए थकी घना फायदा है कीड़ा मकोड़ा जुताई भी थकी किसान भाई अपन खेतर भी साफ रहेगा एनम कई प्रकार कूड़ो कोलेस्ट्रोल डेंटल है तो भी अपने सफाई थी जाए आब्बा वाली फसल ने लीधे भी अपने तैयार मिलेगा वधारे भाग कहीं भाग दौड़ भी नहीं करवी पड़े एट किसान भाई आ समय अपने गर्मी ने जुताई कर दू तो जुताई थकी जय अपने करवी जरूरी है करी भी देवी है एटले किसान भाई आनी बात खूब ध्यान रखू है। किसान भाई देखो आना समय खास कर पशुधन भी अपने हालांकि जरूर करव है पशु ने छाया हवादार स्थान पर बांधव जरूरी है दाड़ा तीन टाइम अपने पानी पाव जरूरी है पशु ने एक बे वक्त नहलावो है ताकि पशु शरीर पर कई प्रकार मिट्टी है कहीं जो गंगोड़ा है तो ये भी साफ थी एट्ले किसान भाई पशु ने नहला तो अच्छू है ने पानी पाव तो साफ पाव कहीं पशु आवारा पशु छोड़ दे नहीं भाई तो पशु घेरे अपने साफ पानी पाव जरूरी है भाई केम के कहीं गंदो पानी नदी नाला तलाव पानी पी जाएंगे पशु तो एने थकी हुई का बीमार थवानी संभावना थी सके एट्ले किसान भाई छोटी मोटी बात ने अपने ध्यान में राखी खेतीबाड़ी काम करवो।

0: जरूरी है। किसान भाइयों ने पशु ने आपने कहीं गाभिन पशु है तो इन्हें समतल जमीन पर बांधव है, क्योंकि गाभिन पशु ने अपन बड़खड़ जमीन पर बांध देगा तो पशु ने बेचारा तकलीफ थी चुकी है। एटले खास ध्यान रखो जरूरी है। पशु आना गर्मी समय खास कर खान पान में भी अपन ध्यान रखो, हरो सारो हुको सारो मात्रा बराबर आ रही है। इन्हें वाटो वगैरह भी अपने अच्छो गोवन मक्का नो है या कपास निकली है जौ है नो वाटो है ये वो अपन पौष्टिक आहार लूंगा पशु नहीं तो पशु जो पाचन क्रिया कर सके इन्हें दुग्ध मात्रा भी बनी थकी इन्हें फेट भी अच्छी आ सके। एट किसान भाई छोटी मोटी बातों ने अपने ध्यान में रखी ने आ काम करव जरूरी। किसान भाई बातें करवाने की इच्छा है सोरा नो टाइम पास पूरा थी गयो एट आज आप छूटा पड़े काले नवी जानकारी सोरा पर फिर आऊंगा। आज नान भाई आलो आज्ञा आवजू राम राम राम राम।
1: अभी आप खेती की बात सुन रहे थे। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएमएंट 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुखराम और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन।
2: करे सबदरी सोट मारे गोला प्रेम का।

अभी हम आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत सुखराम और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

हरि सुमरण सुध यूं करो। तो जो गागर पणियार और भर ढोले सूरत में अरे मुख से कस

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अभी आप आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत सुखराम और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: अभी अब आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत सुखराम और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज आप सुनेंगे भरत चंद्र शर्मा से कहानी। कहानी का शीर्षक है अमृत कलश।
1: आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में ऐसा कहा जाए कि ये संकल्पों का वर्ष है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजादी के जुनून और जज्बे को कायम रखते हुए हम देश के प्रति, मानव जाति की सेवा के प्रति संकल्पित हो, यह हमारी अवधारणा हो। मित्रों, इसी विषय पर आधारित मेरी एक कथा रचना आपके समक्ष प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक है अमृत कलश। चारों तरफ उल्लास का वातावरण है, तिरंगे अपनी शान से लहरा रहे हैं। उमंग उल्लास के इस वातावरण में रत्ना का मन मयूर भी नाच रहा है। आजादी के तराने गूंज रहे हैं। टीवी, क्या रेडियो, क्या अखबार, सभी जगह देशभक्ति के गीत बज रहे हैं। रत्ना भी भाव विभोर होकर गुनगुनाने लगती है, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कुछ ही देर में वो दूसरे गीत पर फिर भाव विभोर हो जाती है। हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं। सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। रत्ना उमंग से सराबोर है, वहीं उसके पति प्रशांत लंबी चादर तान कर सो रहे हैं। चाय का कप लेकर रत्ना उनके सामने खड़ी है, उन्हें जगा रही है कि आज आजादी का महापर्व है और आप अभी तक नहीं उठे। उबासियां लेते हुए प्रशांत ने कहा, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो आराम करने दो। रत्ना, ये छुट्टी का दिन नहीं है, आजादी का महापर्व है, हमें अपने कर्तव्यों को याद रखने का दिन है। प्रशांत, देखो रत्ना, तुम्हारा आदर्शवाद तुम्हें मुबारक हो। जीवन में कहां काम आता है आदर्शवाद। तुम्हारे और मेरे पिताजी भी तो

स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और तुम्हारे पिताजी तो गांधी जी के आश्रम में भी कुछ समय तक रहे, क्या हुआ? किसी ने स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम तक नहीं लिखा? रत्ना, दरअसल मेरे पिता आत्म स्वाभिमानी थे, कभी चलकर स्वयं नाम लिखवाने गए भी नहीं। और तुम्हें पता है, आज जिस स्वच्छ भारत की संकल्पना की बात हम करते हैं, वो तो उनके खून में थी। तभी तो घर के सामने वाली सड़क पर हर त्योहार पर सुबह सवेरे उठकर झाड़ू लगाया करते थे।

सवेरे उठकर झाड़ू लगाया करते थे, याद है ना तुम्हें? प्रशांत खीज उठे। तो बताओ रत्ना, मैं क्या करूं? स्वतंत्रता संग्राम चल रहा होता तो उसमें कूद जाता। रत्ना, देखो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो अब खून देने का यही अर्थ है कि हम अपना खून पसीना देकर राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना सहयोग करें। और तुम्हें स्वामी विवेकानंद जी के शब्द भी तो याद होंगे, उन्होंने क्या कहा है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी देश को कुछ देना सीखें। प्रशांत, रत्ना वो सब तो ठीक है, पर अब मैं तो सरकारी सेवा से भी रिटायर हो गया, न मेरे पास कोई पद है न कोई कद है, और वैसे भी अब आराम के दिन है, दोनों टाइम थोड़ी चहलकदमी करो और आराम से सो। रत्ना, देश सेवा और समाज सेवा करने के लिए न किसी पद की आवश्यकता होती है न किसी कद की, बस एक भावना, एक जज्बा और मन में एक उमंग चाहिए। क्या तुम्हें याद है 5 वर्ष पहले वाली हमारी अंडमान निकोबार यात्रा? अंग्रेजों ने जिन स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा दी थी, उन्होंने कैसे कठोर कारावास और यंत्रणा को सहते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वहां उन्हें कोलू के बेल की तरह घाणी में चलाया जाता था और उनकी लाश समुद्र के अंदर फेंक दी जाती थी। वो अमर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इन जैसे कितने ही बलिदानियों को क्या हम भूल जाएं, जिन्होंने इस देश को अपना खून देकर आजाद करवाया, उस देश के नवनिर्माण के लिए उनकी स्मृति में कुछ संकल्प लेने का दिन है। प्रशांत को लगा कि उसके दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी पिता भी जैसे आज कुछ संदेश दे रहे। कुछ हलचल हुई, सड़क पर कुछ गरीब बच्चे छोटे छोटे तिरंगे झंडे लेकर बड़ी उमंगों के साथ कुछ गा रहे हैं। तन पर कपड़ा नहीं है पर हाथ में तिरंगा झंडा, उनके जोश और जुनून का यह वातावरण निर्माण कर रहा है कि पढ़े लिखे आदमी को भी बहुत कुछ सीख दे रहा है। रत्ना, देखो आज सुबह सवेरे जल्दी उठकर मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं और उसे किसी यतीम बच्चों की बस्ती में बांट कर आओ। कोरोना के कारण स्कूल तो बंद हैं, छोटे स्कूल या गरीब बच्चे पढ़ते हैं आस लगाकर बैठे होंगे, तो जिस तरह से उत्तरायण पर हम सुबह सवेरे उठकर कुछ नेक कार्य करते हैं, ठीक इसी तरह जाओ और बच्चों की उमंगों के साथ अपना स्वर मिलाओ। तुम्हें पता है कोरोना में ऑक्सीजन की, प्राणवायु की कितनी किल्लत हुई थी। मैंने तो उसी दिन संकल्प लिया पौधे लगाने का और मैं लगा भी रही हूं, पर क्या तुम मेरे इस संकल्प में सहभागी बनोगे? अब प्रशांत नए जोश से भर उठे। रत्ना, मैं तुम्हारे उगाए गए पौधों की देखभाल करूंगा, हरे भरे वृक्ष बनाऊंगा और इस पृथ्वी की चुनर को हरी भरी धानी संकल्पित कर देने का

0: परिश्रम करूंगा, तभी रेडियो पर सुमधुर गीत बज उठा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
1: अभी आप वातायन के अंतर्गत भरत चंद्र शर्मा से कहानी सुन रहे थे। कहानी का शीर्षक था अमृत कलश। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM band 101.3 MHz पर। प्रातः के 7:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, जिनका प्रसारण किया जाएगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में जाने अनजाने फिल्म के गाने के साथ। हसरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम है राई प्यार के। लीजिए अब सुनिए हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: में मैं
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
2: जाने
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदा बहार।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आन मिलो सजना इस फिल्म से। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइन 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
6: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
5: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
7: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
5: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारी पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में

0: में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल

0: शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वह भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कुंकड़ी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धरमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार।

0: चार एक बार फिर सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ख्याति गांधी का नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा कुछ दिल से कार्यक्रम उसके नाम है जो शायद हमारी रसोई में सबसे अधिक मौजूद रहता है, लेकिन जिसके महत्व पर हम बहुत कम विचार करते हैं। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। ऐसी फसल जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की थाली तक भोजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा, कृषि और पोषण का एक महत्वपूर्ण आधार है। चाहे गरीब की रसोई हो या किसी बड़े होटल का मेन्यू, इसने हर जगह अपनी सहज उपस्थिति दर्ज कराई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सरलता। यह किसी भी सब्जी के साथ घुल मिल जाता है, किसी भी मसाले के साथ अपना स्वाद बना लेता है और हर क्षेत्र की भोजन परंपरा में स्वयं को ढाल लेता है। शायद यही कारण है कि दुनिया के अनेक देशों में यह सबसे अधिक खाई जाने वाली फसलों में से एक है। श्रोताओं, अगर जीवन के दर्शन की बात करें तो आलू हमें एक अनोखा संदेश भी देता है कि जीवन में हर समय आगे दिखाई देना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि शांत, सहज और सहयोगी होना महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग स्वयं चर्चा का विषय भले ना बने, लेकिन उनके बिना जीवन का स्वाद अधूरा लगता है। और जब बात आलू की हो तो बात सिर्फ एक सब्जी तक सीमित नहीं रहती। यह हमें हमारी पूरी भोजन संस्कृति की ओर ले जाती है। आखिर भोजन सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं है, यह हमारी परंपराओं, हमारी मिट्टी, हमारे किसानों और हमारी जीवन शैली का प्रतिबिंब है। इस पर आगे आपसे और चर्चा करेंगे, उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों हम बात कर रहे थे ऐसी साधारण सी दिखने वाली एक फसल की जिसने हमें भोजन के महत्व की ओर सोचने के लिए प्रेरित किया। और जब भोजन की बात चले तो भारत की समृद्ध खान पान संस्कृति का उल्लेख किए बिना यह चर्चा अधूरी रह जाती है। दोस्तों हमारा देश विविधताओं का देश है, यही विविधता हमारे भोजन में भी दिखाई देती है। उत्तर भारत की रोटी दाल और सब्जियां हों, दक्षिण भारत के इडली डोसा सांभर हो, पश्चिम भारत के पारंपरिक व्यंजन हो या पूर्वोत्तर भारत की विशिष्ट खाद्य परंपराएं हो, हर क्षेत्र का भोजन अपनी मिट्टी, अपने मौसम और अपनी संस्कृति की कहानी कहता है। भारतीय भोजन की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ स्वाद और स्वास्थ्य दोनों को हमेशा साथ लेकर चलने की परंपरा रही है। हमारे पूर्वजों ने भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं माना, बल्कि उसे शरीर मन और आत्मा के पोषण का माध्यम भी समझा है। यही कारण है कि हमारी रसोई में हल्दी, जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, लौंग ऐसे मसालों का स्वाद सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य लाभ के लिए भी किया जाता रहा है। लेकिन आज के तेज रफ्तार जीवन में भोजन का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। स्वाद की दौड़ में कई बार पौष्टिकता पीछे छूट जाती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम अपने भोजन की ओर एक बार फिर से सजग दृष्टि से देखें। हमारा भोजन ऐसा हो जिसमें अनाज, दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल और पर्याप्त जल शामिल हो। शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ उसे आवश्यक पोषक तत्व भी मिले, यही हमारे संतुलित आहार की पहचान होती है। भारतीय चिंतन में भोजन को तीन अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वह है जो ताजा, स्वस्थ, स्वच्छ, संतुलित और प्राकृतिक हो। ऐसा भोजन न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत और स्थिर बनाने में सहायता करता है। जब भोजन शुद्ध होता है तो विचारों में भी शुद्धता आती है। और स्वस्थ शरीर किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होता है, जिस पूंजी की नींव हमारे दैनिक भोजन में ही छिपी है। इसलिए भोजन करते समय सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि पोषण और संतुलन को भी महत्व देना आवश्यक है, क्योंकि अच्छा भोजन सिर्फ जीवन नहीं चलाता बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। इसी विचार के साथ अब समय है एक और मधुर से गीत का। इस गीत के बाद आपसे फिर कुछ और दिलचस्प बातें साझा करेंगे।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारतीय भोजन संस्कृति की और इस बात की कि हमारा भोजन सिर्फ स्वाद का विषय नहीं बल्कि स्वास्थ्य और जीवन शैली का भी आधार है। दोस्तों, भोजन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि वह मौसम के अनुरूप हो। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीना सीखा था, इसलिए हमारे खान पान में भी ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन देखने को मिलता है। इन दिनों जब गर्मी अपने चरम पर है, नौतपा का समय चल रहा है और सूर्य की तपिश पूरे उत्तर भारत में अपना प्रभाव दिखा रही है, ऐसे मौसम में शरीर को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। यही वह समय है जब हमें अपनी दिनचर्या और भोजन दोनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी पारंपरिक भारतीय भोजन पद्धति की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह हमें मौसम के अनुरूप खाने की सीख देता है।

गर्मियों में ऐसे खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दी जाती है जो शरीर को ठंडक प्रदान करें और पानी की कमी ना होने दें। ऐसे फल जो ना सिर्फ शरीर को ताजगी देते हैं बल्कि गर्मी से होने वाली थकान और निर्जलीकरण से बचाने में भी सहायक होते हैं। इसी तरह भोजन में हल्की और पानी से भरपूर सब्जियों का उपयोग भी लाभदायक माना जाता है। दही, छाछ और लस्सी जैसे पारंपरिक पेय पदार्थ सदियों से भारतीय रसोई का हिस्सा रहे हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ये शरीर में तरल पदार्थों की पूर्ति करने के साथ साथ पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। गर्मी के दिनों में सबसे महत्वपूर्ण है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। कई बार हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्यास लगने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि शरीर को नियमित अंतराल पर पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए और जहां तक संभव हो तेज धूप में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि प्रकृति जिस मौसम में जो देती है वही उस समय शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यह सिर्फ कहावत नहीं है बल्कि अनुभव से उपजा हुआ जीव विज्ञान है। गर्मियों में मिलने वाले फल और सब्जियां प्रकृति का वही उपहार है जो हमें इस मौसम की चुनौतियों से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, भोजन सिर्फ स्वाद का विषय नहीं है, यह हमारी सेहत का सबसे बड़ा संरक्षण भी है। यदि हम संतुलित, पौष्टिक और मौसम के अनुरूप भोजन को अपनाते हैं तो न सिर्फ गर्मी के प्रकोप से बच सकते हैं बल्कि पूरे वर्ष स्वयं को अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान भी रख सकते हैं। इस भीषण गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं, ताजे और मौसमी फल सब्जियों को भोजन में शामिल करें और अपनी पारंपरिक खान पान संस्कृति की उन अच्छी आदतों को अपनाएं जो पीढ़ियों से हमें स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाती आई है। आइए चलते हैं फिर से संगीत की दुनिया में।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
6: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
7: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
6: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
7: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: दोस्तों भारतीय दर्शन में कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि जीवन का गहरा अनुभव है। हम जो खाते हैं उसका प्रभाव हमारी ऊर्जा, हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और यहां तक कि हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। दरअसल स्वस्थ जीवन की शुरुआत किसी बड़ी दवा या उपचार से नहीं बल्कि हमारी थाली से होती है। हमारी रसोई ही हमारा पहला स्वास्थ्य केंद्र है और हमारा भोजन ही हमारी पहली औषधि। तो दोस्तों अगली बार जब आप भोजन के लिए बैठें, तो सिर्फ स्वाद के बारे में ना सोचें, यह भी सोचें कि आपकी थाली में रखा भोजन आपके शरीर, आपके मन और आपके विचारों को किस तरह प्रभावित करने वाला है। क्योंकि अच्छा भोजन सिर्फ जीवन को चलाता नहीं बल्कि उसे बेहतर भी बनाता है। इसी के साथ इजाजत दीजिए ख्याति गांधी को कार्यक्रम कुछ देर से यहीं समाप्त करने की। आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 8:45 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सीमा मिश्रा और साथियों के गाए राजस्थानी गीत।

अभी आप राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत सीमा मिश्रा के गाए राजस्थानी गीत सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए अब सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का आखिरी गीत।

0: अभी आप राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत सीमा मिश्रा के गाए राजस्थानी गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र का प्रसारण, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रमदान। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत। अगले 2 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: रिगार्डिंग द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप द प्राइस स्टेबल, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, सो दीज ऑल एफर्ट्स हैव बीन डन टू कीप द प्राइस स्टेबल। वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स ऑल्सो। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि LPG का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 डेज विद देम, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड सिमिलरली फॉर क्रूड ऑल्सो वी आर वर्किंग।
1: इस बीच 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ भारतीय वाणिज्य जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और इसके 3 जून तक स्वदेश पहुंचने की उम्मीद है। इधर पचपदरा HPCL रिफाइनरी में बीते महीने संयंत्र में आग के बाद रुकी हुई गतिविधियों और कार्यों की प्रगति को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने HPCL के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। रिफाइनरी से आगामी 1 जून से कमिश्निंग गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी भी अगले कुछ सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कल जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़ों के अनुसार देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हो गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों को लगे टीकों का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 2 गुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटा

0: आने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने विद्यार्थियों को किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली परामर्श हेल्पलाइन पर संपर्क करने की सलाह दी है। इधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। 12वीं का परिणाम 71.65% और 10वीं कक्षा का परिणाम 64.69% रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत इन दिनों कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन तथा जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रभारी मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभियान के तहत कल जयपुर के नींदड़ वन क्षेत्र में श्रमदान किया। उन्होंने पक्षियों के लिए परिंडे लगाए और इको ट्रेल का लोकार्पण किया। इधर जल भवन परिसर में जल संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्मिकों ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए और जल के सदुपयोग का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। बालोतरा के रेवाड़ा जैतमाल अमृत सरोवर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री के विश्नोई ने श्रमदान किया। चित्तौड़गढ़ में प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने जिलाधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई हिस्सों में कल देर शाम मौसम में अचानक बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर सहित 8 शहरों में दोपहर बाद आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। इस दौरान राजधानी जयपुर सहित आसपास के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी के बीच जयपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, अलवर और झुंझुनू जिलों में वर्षा हुई। झुंझुनू जिले के कई इलाकों में अंधड़ आया। इस दौरान आसमान में धूल का गुबार छा गया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में देर शाम मौसम का मिजाज बदला और धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश ने लोगों को तेज गर्मी से राहत दी। धौलपुर, भरतपुर, दौसा सहित पूर्वी जिलों में भी मौसम के बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली। अजमेर में दिन भर तेज धूप के बाद देर शाम मौसम ने करवट बदली और आंधी बिजली की गतिविधियों के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। बेमौसम की बरसात से जिले में कई स्थानों पर पेड़ों के गिरने और बिजली के पोल उखड़ने की खबर है। हाड़ौती क्षेत्र में भी आंधी बारिश की गतिविधियां हुई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। नागौर और आसपास के इलाकों में भी देर रात तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ निजात दिलाई। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई।
1: नागौर जिले में शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों को नौतपा में गर्मी से राहत दी। वहीं जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। दिन भर उमस और गर्मी से परेशान लोगों को देर रात चली तेज आंधी और बरसात से राहत मिली। बारिश के दौरान शहर के कई निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया। जिले के असावरी, तौसर सहित जिला मुख्यालय के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नींबू के आकार के ओले गिरे। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज और कल जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभागों में बारिश के साथ मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। दूसरी ओर प्रदेश के पश्चिमी और सरहदी जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान भीषण गर्मी की स्थिति बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया

0: किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के मौजूदा संस्करण में राजस्थान रॉयल्स का सफर समाप्त हो गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन गुजरात टाइटंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 219 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता का फाइनल कल गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित, मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रमदान। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की, देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत, अगले 2 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं अशोक खोसला की गाई गजलें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत अशोक खोसला की गाई गजलें सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल।

अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत अशोक हुसला की गायी गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:30 होने को है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आनिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसी बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

0: सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जो सिनेमा के पर्दे पर बतौर विलेन भी नजर आए।
1: मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? अवेले पे आ जाना, कल यहां पे हजारों लोग होंगे। पूरी फोर्स बदलवा के रख दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा।
2: क्या
1: हाहाकार?
2: तेरे बाप का राजा क्या?
3: क्वाइट विक्रम, मामा ठाकुर से गलती हुई है।
2: क्या बात करे सर,
1: ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा।
2: चलिए अभी दिल्ली।
0: बतौर चरित्र अभिनेता भी, बतौर कॉमेडियन भी।
4: ए खालिद भाई, मेरा नंबर है।
1: अरे यार तू दोस्त है उनका, मैं गया तू गई की बात?
4: ना ना, दोस्त है तो घर पे आ।
1: क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया? ये तो बहुत कम है यार, तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे 10 लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म।
5: क्या 500? खालिद भाई मेरी बीवी क्या?
1: अरे सॉरी सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी।
5: एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना।
1: मेरे को मालूम है किसने लिखा है।
0: और उन्होंने रंगमंच पर भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं जाने माने अभिनेता परेश रावल को।

परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार जुहू में रहता था और उनका एडमिशन वहां जुहू स्कूल में करवा दिया गया। जब वो 11-12 साल के थे तो स्कूल के मंच पर अभिनय करने लगे और जुहू स्कूल की प्रिंसिपल ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने नन्हे परेश से कहा कि वो अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मंच पर वो अपनी अभिनय प्रतिभा की जौहर दिखाना जारी रख सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई इसी तरह से चलती रही। रंगमंच और पढ़ाई को किसी तरह से परेश रावल ने बैलेंस किया और फिर मुंबई के नरसी मुंजी कॉलेज में पढ़ने लगे। यहां के प्रिंसिपल ने भी परेश रावल की अभिनय प्रतिभा को समझा और उनके साथ सहयोग किया, यानी उन्हें कॉलेज के लेक्चर्स छोड़ देने की अनुमति मिल गई क्योंकि वो अपने कॉलेज के लिए थिएटर किया करते थे। परेश रावल ने अपने कॉलेज को कई प्रतियोगिताओं में जिताया। उसके बाद 1973 आया जबकि परेश रावल ने पेशेवर थिएटर ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल थिएटर के बैनर तले उन्होंने अपना पहला प्ले किया जिसका नाम था वेन छे मौत। ये वो दिन थे जब परेश फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे, वो थिएटर की दुनिया में खुश थे क्योंकि यहां उन्हें अपने मन मुताबिक एक्टिंग करने मिल रही थी। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के काम पर और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि थिएटर के अलावा फिल्मों में भी अभिनय की दुनिया का विस्तार है। और तकरीबन 4-5 साल बाद सन 1978 से 1980 के बीच परेश रावल ने यह फैसला किया कि उन्हें फिल्मों की दुनिया में जाना है। फिल्मी दुनिया में संघर्ष करना शुरू किया। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, कुमार साहनी जैसे कला फिल्मों के निर्देशकों से उन्होंने समय समय पर मुलाकात की और बताया कि वो फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं और फिलहाल थिएटर में सक्रिय हैं। लेकिन परेश रावल का काम नहीं बना।

अब परेश को ये समझ में आ गया था कि फिल्मों में उनके लिए फिलहाल तो जगह नहीं है। वो थिएटर में अपना पूरा ध्यान लगा रहे थे। एक दिन की बात है, मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर में परेश रावल के किसी नाटक का शो चल रहा था। जाने माने प्रोड्यूसर करीम मोरानी उस शो को देखने आए और उन्होंने नेपथ्य में जाकर परेश रावल से भी बात की और बाद में निर्देशक राहुल रवेल से परेश के नाम की सिफारिश की। राहुल रवेल उन दिनों फिल्म बना रहे थे अर्जुन, और सन 1985 में परेश रावल को फिल्म अर्जुन के लिए साइन कर लिया गया। शूटिंग का पहला दिन था, पहली बार परेश रावल कैमरे का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपना टेक इतनी अच्छी तरह से दिया कि निर्देशक राहुल रवेल ने कहा, परेश जी अब आप मेरी हर फिल्म में काम करेंगे। और इस तरह से परेश रावल थिएटर की दुनिया से होते हुए फिल्मों में चले आए। धीरे धीरे परेश रावल ने फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू किए, लेकिन इन दिनों वो नाटक करते चले जा रहे थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सन 1976-77 का जमाना था। परेश रावल एक गुजराती नाटक कर रहे थे ठोकर, जो पीटर श्वाफर्स के नाटक इक्वल पर आधारित था, और इन दिनों उनकी मुलाकात हुई मॉडल और अभिनेत्री स्वरूप संपत से। परेश रावल को स्वरूप संपत से प्यार हो गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि परेश रावल का ताल्लुक एक मध्यमवर्गीय गुजराती परिवार से था और स्वरूप संपत एक अंग्रेजीदा परिवार से आई खूबसूरत मॉडल, मिस इंडिया और एक बेहद खूबसूरत नाजुक शख्सियत थी। दोनों का कहीं कोई मेल नहीं था। परेश कहते हैं कि ये उनके लिए सपनों जैसे दिन थे। आखिरकार एक दिन परेश रावल और स्वरूप संपत ने शादी कर ली।

0: परेश रावल कहते हैं कि फिल्मों में अभिनय के लिए अगर हिंदुस्तानी सिनेमा के कोई आदर्श हैं उनके लिए तो वो हैं बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी। परेश रावल का ये भी मानना है कि अभिनय उन्हें बड़ा ही दिलचस्प करियर लगता है क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन के बाद परेश रावल को फिल्मी दुनिया में अपना नाम अच्छी तरह से कमाने का मौका मिला तो वो थी महेश भट्ट की सन 1986 में आई फिल्म नाम। इसमें भी परेश रावल ने विलेन का रोल किया था। इसके बाद तो परेश रावल ने कई फिल्मों में तरह तरह के रोल किए। कभी वो बतौर विलेन नजर आए, कभी चरित्र अभिनेता के तौर पर, और कभी आपको हंसाते हुए नजर आए, कॉमेडी करते हुए।
1: विश्वजीत, हाँ बोल, ये इसमें कौन सी साड़ी पहननी है, है?
2: पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो?
1: अरे भाई, कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि इसमें कौन सी साड़ी को इस्त्री मारनी है। डार्लिंग विश्वजीत,
2: परमजीत।
1: कौन परमजीत?
2: मेरा नाम परमजीत है जिससे तुमने शादी की है।
1: अभी अभी सोना बेटा, तुम्हारी बात को बोलो ना। अच्छा क्या बात बात में चिल्लाते रहने का है?
3: ओहो डैडी, मेरा नाम सोना नहीं मोना है।
1: ये साड़ी की उलझन में मैं इसका नाम भी भूल गया, परिमल।
4: डैडी जी, मेरा नाम परिमल नहीं, अनमोल है।
1: ए यार, तेरे को क्या हो गया? चुनीलाल?
2: मणिलाल।
1: कौन मणिलाल?
2: तोड़ा नाम मणिलाल है, मणिलाल पटेल।
1: ये नाम मैंने कब रखा?
2: बचपन से।
1: बचपन से?
2: हाँ,
1: बचपन से मेरा ये नाम है। और मुझे अभी बताती हो तुम? ले, अभी मैं याद रखूंगा, मेरा नाम मेथी लाल है बस।
2: ओ जीसस।
1: जीसस? अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथी लाल है, अभी जीसस।
2: गेट आउट, गेट आउट।
0: परेश रावल की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। परेश मानते हैं कि हेरा फेरी की सफलता का सारा श्रेय जाता है इस फिल्म के लेखक नीरज वोरा को, जिन्होंने कॉमेडी को बड़ी अच्छी तरह से निभाया था।
5: भैया, आप गांव में घर है ना आपके?
6: नहीं है। क्यों?
5: नहीं, क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया
6: है?
5: तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहां कुत्ते की तरह भटकोगे।
7: देख राजू, जबान को लगाम दे, समझा?
5: देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका।
6: सच बात बोलता तो मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे दे रे बाबा।
7: आपको मुझ पर भरोसा नहीं?
5: ये इसके दिल में खोट है।
7: तेरे दिल में खोट है? मैं तो किराया देके रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता।
5: हाँ तो मुफ्त में रहता तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ।
7: तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ।
5: हाँ तो करना तू।
7: हाँ तो तू भी करना।
5: हाँ तो कागज लेके आना तू।
7: तू कागज ले।
5: अरे मैं क्यों लेके
7: आऊं?
5: तुम दोनों को दोनों मार जाओ, पेपर लेके आओ, जाओ।
6: इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।
5: हेलो, पेपर पे साइन किया है, इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में।
7: करता हूँ ना, साइन कर रे बाबा, साइन कर। तू कर रे साइन, साइन कर।
8: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
7: क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया?
5: गाना? ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला।
7: ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे, साइन कर।
8: गोल माल है भाई, सब गोल माल है।
7: आपको गाना नहीं सुना दे रहा?
5: कौन सा तो गाना
7: साफ सुनाई दे रहा है?
5: ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ इसका बोरिया पिस्तौल उठाओ, बाहर फेंक दो इसको।
7: ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे, गाना लगा ले, साइन कर रहे गाने।
9: हेलो
5: हेलो, देवी प्रसाद?
9: चम्मा नहीं, देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे?
5: सर वो मेरी मछली का क्या हुआ?
9: वो तो मैं खा गया।
5: खा गए?
9: हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।
0: बतौर विलेन परेश रावल अपनी दो फिल्मों को बड़ा

0: तो पूर्ण मानते हैं। एक है फिल्म डकैत और दूसरी फिल्म कब्जा। आज परेश रावल 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और एक कलाकार के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी कुछ प्रतिनिधि फिल्मों का चुनाव करना। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल ने अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बताया है। उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है केतन मेहता की फिल्म सरदार, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था। परेश रावल से जब पूछा गया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो वो मिल नहीं सकते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो परेश का जवाब था कि उन्होंने असंख्य तस्वीरें उनकी देखी और उन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया कि सरदार पटेल किस तरह से बोलते होंगे, किस तरह से चलते होंगे और उनका स्वभाव किस तरह का होगा। इसके अलावा उन्होंने इस अभिनय के लिए बहुत सारी रिसर्च भी की।
1: फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं।
0: पूजा भट्ट की फिल्म तमन्ना को वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक वृहन्नला का, एक हिजड़े का किरदार निभाया था। परेश ये कहते हैं कि ऐसे किरदार भी मानवीय होते हैं, उनका अपना संघर्ष, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं और इस फिल्म के जरिए उन्होंने इस तरह के चरित्र की तकलीफों को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत कर दिया था।

0: हीरा फिरी फिर हीरा फिरी, आंखें आवारा पागल दीवाना, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, माला माल वीकली, गोलमाल, हलचल, छुप छुप के, भागम भाग, शंकर दादा, भूल भुलैया, वेलकम, मेरे बाप पहले आप, ती धनादन और हंगामा जैसी ना जाने कितनी फिल्में हैं जिनके जरिए परेश रावल ने आपको हंसाया है।
1: और नाचते नाचते तुम्हारे पांव कहाँ पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो।
2: अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को ना दे।
1: अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घूमड़ जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा?
0: सन 1994 में परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म वो छोकरी के लिए, और फिल्म सर के लिए उन्होंने जीता फिल्म फेयर पुरस्कार।
3: हम लोगों को इतना खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है ना? मैं बताता हूँ, बात यह है कि जब ये छोटी थी ना तो खुश रहती थी, खेलती रहती थी, हाँ, लेकिन जिस दिन से इसकी माँ गई है ना, चुप हो गई है। घर एकदम शमशान हो गया था, और इतने साल के बाद आपने सर पे हाथ रख दिया, मेरे घर में जान आ गई है।
0: सन 2001 में फिल्म हेरा फेरी के लिए परेश रावल चुने गए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन फिल्म फेयर की ओर से। सन 2003 में आवारा पागल दीवाना फिल्म के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।
4: मेरा गला बैठने को आया है? तू क्या काम दुकान पर बेच के आया है? साला बेरा, इधर कचरा नहीं डालने का? ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। ये गुलाब वाले, तेरा नाम क्या है?
5: लिसन जेंटलमैन।
4: लिसन जेंटलमैन, ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का।
5: आई एम सॉरी।
4: अबे सॉरी क्या, इंडिया समझे? गुनाह करो, सॉरी बोलो।
6: क्या हुआ जी?
4: अब ये साला घनचक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं, थक गया। इधर कचरा नहीं डालने का, इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना।

0: इस रावल की एक महत्वपूर्ण फिल्म है अंदाज अपना अपना, जिसमें वो सलमान खान और आमिर खान के साथ नजर आए थे। परेश रावल रंगमंच पर भी सक्रिय हैं। उनकी कंपनी टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाती है और उन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया है, ओ माई गॉड। ये फिल्म गुजराती के एक प्रसिद्ध नाटक पर आधारित थी।
1: किसे भेजनी है नोटिस?
2: भगवान को।
1: मिस्टर भगवान? सरनेम?
2: पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है।
1: अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं?
2: हाँ, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं।
1: अच्छा।

0: सन 2014 में भारत सरकार ने परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता परेश रावल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवानी

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं।

जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूमाते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते, और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है, कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई, जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा

आया, मैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूं। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया, क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश मां की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था। और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

0: कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं।
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

0: कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।
1: फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: थी धन्य जवानी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये पहला जो गीत है अब्दुल्ला फिल्म का गाना।
1: अभी आप विविध भारती के मुंबई केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं मेहदी हसन और तरन्नुम नाज की गाई गजलें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत मेहंदी हसन और तरन्नुम नाज की गाई गजलें सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल।

अभी हम सुगम संगीत के अंतर्गत तरन्नुम नाज और मेहदी हसन की गाई गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं काइट्स फिल्म का गीत।

केके का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म काइट्स से। गीत के बोल थे नासिर फराज और आसिफ अली बेग के, संगीत था राजेश रोशन का। आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म टू स्टेट्स से। शंकर एहसान लॉय की बनाई धुन पर गीत को आवाज दी है अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा ने। गीत के बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य की।

अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म टू स्टेट से। आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म सुल्तान से। आवाजें हैं वडाली ब्रदर्स की।

ये था विशाल शेखर का। आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म मेरे यार की शादी है से। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: दिल मांगे मोर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का आखिरी गीत फिल्म कल हो ना हो से। आवाजें हैं अलका याग्निक और शान की।
1: कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है।

0: कल होना हो फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश

0: भेज दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजासुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस पहुंची अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन है। बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम उन्हें और उनकी फिल्मों के गाने आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। भागम भाग इस फिल्म का गाना रेमो फर्नांडिस और सुजेन की आवाजों में, समीर के बोल संगीत प्रीतम का।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाजों में। नितिन रायकवार के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम का ओ माई गॉड। इस फिल्म का गाना है कैलाश खेर, मीत ब्रदर्स और अनजान की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: बज रहे हैं तीन।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये है राजा फिल्म का गाना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये हंगामा फिल्म का गाना शान और साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी।

यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना गोलमाल, इस फिल्म का गाना शेखर और स्नेहा पंत की आवाजों में, विशाल दादलानी और कुमार का लिखा हुआ गाना, संगीत है विशाल शेखर का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अतिथि तुम कब जाओगे। इस फिल्म का गाना अनुपम आमोद की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों, आज जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, तो उसको आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि एक हसीन शाम को मन किया कि ठंडे ठंडे पानी से नहा लूं, ये सोचते हुए कि ए दिल तू किस पे आ गया है। मन में उथल पुथल थी कि पीते पीते कभी कभी यू अंडे का फंडा भी समझ लेना चाहिए, इसलिए मैंने कहा सूरज जरा आ पासा, तो उसने कहा आला बर्फी वाला। मैंने कहा जब तक समोसे में आलू रहेगा

देश के यदि चाशनी का बोलबाला रहेगा। इसके बाद मन सोचने लगा, हाय रे वो दिन क्यों ना आए। ये आज की इबारत है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि इबारत हो या शरारत हो, हमारी ये इनायत है, चलेंगे साथ सफर में चाहे कहीं कयामत हो। एक साथी लिख रहे हैं कि शाम तो नहीं, हमारा तो दिन सुबह से ही हसीन बन पड़ा है। सुबह से मौसम अटकेलियां कर रहा है, कभी धूप कभी छांव, कभी तेज हवा हल्की सी बूंदाबांदी। इस मौसम का क्या वर्णन करूं, मन सुबह से झूम उठा, ये मौसम का जादू है मितवा, अब दिल पर काबू है मितवा। दोस्तों, आज जो इबारत हमने पोस्ट की उसमें कुछ जो गाने हैं वो खाने पीने की चीजों को लेकर है। आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम एक सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे स्नैक्स या बनाने में या फिर जो छोटा मोटा नाश्ता शाम के समय का होता है उसमें आलू का बहुत महत्व होता है। हम सभी को पसंद होता है, चाहे वो समोसा हो, आलू बड़ा हो या फिर एक कोई सैंडविच हो जिसमें आलू डाला जाता हो। इस तरह के बहुत सारे नाश्ते बनाए जाते हैं आलू से। तो आलू हमारे जीवन में या हमारे रसोई घर में क्या महत्व रखता है, इसके क्या फायदे हैं या इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे हमें मिल सके, इस बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे जब शाम के नाश्ते की बात होती है तो सबसे पहले हमारा मन करता है कि आलू के पकोड़े खा लिया जाए या आलू से बनी हुई ऐसे ही किसी नाश्ते की हमें याद आ जाती है। वैसे सबकी पसंद जो है वो अपनी अपनी अलग होती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर हम थोड़ी आलू की बातें करेंगे और इसके अलावा कुछ और भी गीत हम सुनेंगे। सबसे पहले जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है दुल्हन एक रात की, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं। संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। धर्मेंद्र और नूतन पर फिल्माया गया ये गाना है।

0: उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। जी हाँ, शाम का वक्त हो और अगर आपको पता चले कि आपकी पसंद का आलू का बना हुआ कोई बहुत ही मजेदार नाश्ता आपके सामने आया है तो आप यही कहेंगे ना कि उनको देखा तो दिल उस पर आ गया है। मदन मोहन का इसमें संगीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों का राजा है और वो हर किसी के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बेफिक्र रूमानी शाम की याद दिलाती है आज की इबारत। इसे पढ़कर मन में एक चुलबुली और हास्य से भरी तस्वीर उभर रही है जिसमें खुद से बातें करते करते अचानक से शायरी और फिर खाने पीने की चीजों जैसे कि ठंडे पानी, समोसे, बर्फी पर आ जाते हैं। ये बोलचाल की भाषा का बहुत ही प्यारा और अनूठा मिश्रण है जो कह रहा है कि जीवन की उलझनों को भी हंसी मजाक के चाशनी में डुबोकर आसान बनाया जा सकता है। जिंदगी में चाहे जितनी समस्याएं हो, हंसी मजाक का स्वाद कभी कम नहीं होना चाहिए। अंत में गुजरे हुए उन सुनहरे दिनों की याद इस पूरी इबारत को एक बहुत ही भावुक और प्यारा सा मोड़ दे देती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर रोज हसीन शाम को इतने लू वाली गर्मी है, शाम को ऑफिस से आने के बाद ठंडे ठंडे पानी से दोबारा शावर में नहाना ही पड़ता है, उसके बाद ही आगे की दिनचर्या शुरू हो पाती है और हम थोड़े से रिलैक्स हो पाते हैं। तो चलिए आपके दिल दिमाग को हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा है और ठंडे पानी से नहाने का इसमें जो मजा है वो तो और भी है ही। पति पत्नी और वो इस फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, रविन्द्र जैन का संगीत।
1: ठंडे ठंडे पानी से

आलू से बना हुआ कोई स्वादिष्ट नाश्ता जब आपके घर में बन रहा हो तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, और जब वो सुगंध फैलती है तो ऐसा भी कभी होता होगा ना कि आसपास में आपके कोई पड़ोसी, आपके कोई नाते रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त आपका दरवाजा खटखटाते होंगे और पूछते होंगे भाई आज क्या बन रहा है। एक साथी लिख रहे हैं, आलू वो सादगी है जो हर स्वाद में रंग भर देता है, इसलिए हर घर की रसोई में उसकी खास जगह होती है। हर सब्जी उसका साथ पाकर और भी स्वादिष्ट हो जाती है। आलू सच में रसोई का राजा है। आलू न दिखावे में बड़ा है न नाम में, लेकिन काम में सबसे बड़ा है। यही उसकी असली पहचान है जो हर मौसम, हर सब्जी और हर थाली में फिट हो जाए, वही असली राजा कहलाता है। आलू, आलू की कहानी सादगी की जीत है। कम में भी सबसे ज्यादा स्वाद देने की कला है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज मैं आलू की टिक्की बना रही हूं। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे बटाटा वड़ा और फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। और एक हमारे साथी जो है उन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की शुभकामनाएं दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की खोज दक्षिण अमेरिका में हुई थी और आलू की कहानी वहीं से शुरू हुई थी। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बात चल रही तो आलू के पराठे, समोसे, पकौड़े से लेकर चिप्स, पापड़ तक सभी का स्वाद निराला है। सुबह सुबह आलू के पराठे मिल जाए, दोपहर में आलू की सब्जी और पूरी मिल जाए और शाम को समोसे मिल जाए तो कहना ही क्या। ये सिर्फ आलू ही नहीं, ये हमें सिखाता है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे आलू हर सब्जी में मिलकर इसका स्वाद बढ़ा देता है, वैसे ही हमें जीवन में होना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि हमारा महत्व हमेशा बना रहे। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के बिना भारतीय रसोई अधूरी है। यद्यपि आज आलू भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारतीय मूल की सामग्री नहीं है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू महज एक सब्जी नहीं है, ये एक एहसास है। ये वो निश्चल साथी है जो हर दूसरी सब्जी के साथ अपनी पहचान मिटाकर घुल मिल जाता है। कभी वह गोभी के साथ जुगलबंदी करता है तो कभी मटर के साथ मिलकर एक नया स्वाद रचता है। वह किसी राजा के थाल का हिस्सा भी है और एक गरीब की झोपड़ी में तसल्ली का निवाला भी है। और एक साथी लिख रही है कि मुझे तो पता ही नहीं आज आलू दिवस है, आज अजीब सहयोग बना है। आज हमारी श्रीमती जी ने आलू के पराठे बनाए हैं, दही के साथ सेवन कर रहे हैं हम। बहुत धन्यवाद आपका। एक साथी लिख रहे हैं कि बेहद खूबसूरत गीत के साथ शुरुआत की है। वैसे आलू दिवस पर हमारे यहाँ आलू पालक टमाटर की सब्जी बनी है, मुझे आलू बहुत ज्यादा पसंद है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी रेसिपी पर सबसे ज्यादा आता है। कौन सी रेसिपी है जब आप ये कहते हैं कि ये दिल मुझे बता दे कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। भाई भाई फिल्म का गाना, गीता दत्त की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत, अशोक कुमार और श्यामा पर फिल्माया गया गाना।

तो बताया क्या आपने कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी चीज पर आ गया है। बहुत सारे श्रोताओं ने इतनी सारी बातें लिखी है, लिखते हैं कि लाल टमाटर हरे मटर में मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया साथ चली गोभी रानी। मुझे आलू इसलिए पसंद है कि वो सभी के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए सबको आलू भाता है। एक साथी लिख रहे कि आज भी लंच में दही वाले आलू बनाए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि उदयपुर जिले में फतेह स्कूल के पास में एक जगह है जहां के आलू बड़े बहुत फेमस है, मैं कल परीक्षा देने जा रहा हूं, जरूर वहां के स्वादिष्ट आलू बड़ों का आनंद लूंगा। और एक साथी लिख रहे हैं कि इबारत कहां से कहां पहुंचा दिया आपने, आज आलू दिवस पर गीतों का मजा मिलेगा। और लिखा है कि आलू दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, आलू बिना कोई रसोई बन नहीं सकती, ये सभी सब्जियों में मिक्स हो जाता है, चिप्स और पराठा तो आलू के ही स्वादिष्ट होते हैं, खिचड़ी और तहरी में मिलाकर उसका टेस्ट भी बदल दिया जाता है जो सबको पसंद आता है, अब तो मिठाइयों में भी आलू का प्रयोग होने लगा है, समोसा तो बिना आलू के बन ही नहीं सकता, आलू की पकौड़ी तो चटनी के साथ गर्मा गर्म खाने में बड़ा ही मजा आता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आलू पौधे का भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होता है। एक साथी ये लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों के राजा है, पर मैं तो कहूं

रसोई की रानी है। एक माँ जानती है कि बच्चों को कैसे सब्जी खिलाना पड़ती है। आलू के साथ कुछ मिला दो तो खा लेते हैं। और हमारा जो बिहारी खाना है वो तो बिना आलू के पूरा ही नहीं बनता है। दाल भात चोखा लिट्टी चोखा, और अगर आलू नहीं है तो ये व्यंजन अधूरा है। संक्रांति में दही चूड़ा, उसके साथ आलू दम। सफर में जाना है पूरी के साथ आलू की भुजिया। बरसात के दिनों के लिए आलू का सूख होता। अतिथियों के लिए आलू के चिप्स, सर्दियों में आलू के अचार। आलू कचालू बेटा कहां गए थे। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आलू सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है और अपने यहाँ आलू का रायता बहुत पसंद किया जाता है जो दही के साथ बनाया जाता है। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि अगर ठंडे ठंडे पानी से ही नहाना था तो सूरज को और पास क्यों बुलाना था। बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर इस गाने में अगर आप गौर करेंगे तो एक लाइन आती है कि आलू टमाटर का साग। जी हाँ, जब बहुत भूख लगी हो तो आलू टमाटर का जो साग होता है ना, वो हमारे मन को कितना ललचाता है, ये इसमें दिखाया गया है। इसीलिए हमने इस गाने को चुना है। तो सुनिएगा आप ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू साधारण सा दिखता है लेकिन हर रसोई की जान है। हर मसाले और हर सब्जी के साथ मिलकर स्वाद दो गुना कर देता है, इसलिए उसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। जिस थाली में आलू हो वो थाली अधूरी नहीं लगती, वो हर स्वाद को पूरा करने की ताकत रखता है। आलू की खासियत यही है कि वो खुद में सादा होकर भी हर व्यंजन को खास बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हम और बैराग फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। ऐसा कभी होता होगा ना कि आपने फरमाइश की है कि मुझे आलू से बना हुआ समोसा खाना है, लेकिन बन कुछ और जाता है। आलू के पकोड़े बन जाते हैं या आलू की टिकिया बन जाती है। तो आपके दिल में यही आता होगा ना कि अरे मैंने तो ये बनाने के लिए कहा था पर आज तो ये बन गया है, कुछ अलग ही हो गया है। चलिए ऐसा ही कुछ गाना है, सुनते हैं बैराग फिल्म से।

कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि रेसिपी कौन सी बनने वाली होती है और क्या बन जाती है, हम कोशिश करते हैं एक नई चीज कुछ बनाने की और कुछ और बनाने का सोचते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाता, कुछ और ही बन जाता है। हो सकता है कि वो उससे ज्यादा स्वादिष्ट, और कभी कभी वो स्वाद जिसकी हम उम्मीद रखते हैं वो कभी नहीं आता है, तो भी मन बड़ा खिन्न हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू को ध्यान से खाओ, क्योंकि आलू बाहर से ठंडा होता है लेकिन अंदर से गर्म होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू ज्यादा खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे और लौकी खाओगे तो लौकी जैसे बनोगे। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सचमुच संयोग है, मैंने आज आलू के पराठे ही बनाए, पति देव को बहुत पसंद है मक्खन और अचार के साथ। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की लौंज एक प्रकार की मिठाई है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सर्दियों में नए आलू को मिट्टी की हांडी में जिसमें आग तपती है उसमें रख देते हैं, उस पके आलू खाने का अलग ही आनंद और स्वाद है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसके भी दिन बहुरे हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के भल्ले भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, दही भल्ले की तरह ही। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू और दाल की बड़ी की चटपटी भाजी बहुत पसंद है, और तो और मैंने आपका कार्यक्रम सुनकर श्रीमती जी से वही भाजी का आग्रह किया और उन्होंने भोजन बन जाने के बाद भी मेरी फरमाइश के अनुरूप मुझे भाजी बनाकर वो दे रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि किसी पड़ोसी ने तो दरवाजा नहीं खटखटाया, पर हाँ कई बार हमारी बेटी और उसकी सहेलियों ने जरूर कहा कि बाहर से अंदर आते ही कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू बेसन की, क्योंकि हम जब सैंडविच के लिए मसाला तैयार करते हैं तो उसमें अहम भूमिका तो आलू की होती है, पर उस पर और भी कई चीजें डाली जाती है, सबसे तेल, फिर उसमें थोड़ा जीरा सौंफ और खड़ा धनिया, और फिर थोड़ा सा बेसन डालकर भुनना, फिर अमचूर या नींबू डालकर उसमें उबले आलू को डालना, और फिर कहीं जाकर इस मसाले को ब्रेड में डालकर सेकना, तब जाकर सबको खिलाना, और फिर उसके बाद सबकी तारीफ पाना। एक साथी लिख रहे हैं कि बंगाल का आलू, बिहार और मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें आलू से बनाई जाती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल थोड़ा मौसम का मिजाज ठंडा है, बारिश हो जाने से प्याज की पकौड़ी, समोसे और कुछ गर्म नाश्ता खाने का मन करता है, मौसम के साथ जुबान का मिजाज भी बदल जाता है तो अच्छा खाने का मन करता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो पर बाजारों में चाट के ठेलों पर खूब भीड़ होती है, आलू की टिक्की समोसे बहुत खाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आलू का जो आकार होता है गोल गोल होता है, लेकिन एक लंबे आकार की भी चीज होती है और उसके बारे में भी बहुत सारी बातें इस गाने में कही गई है, तो उसे भी हम सुन लेते हैं। जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का गाना है, प्रतीक जोसेफ की आवाज से इन्हीं का लिखा हुआ गाना है। संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत हिमेश रेशमिया का, और बड़े दिलचस्प अंदाज में इन्होंने जो है जीवन का फलसफा वो सिखाने की कोशिश की गई है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू की टिक्की के साथ चटपटी इमली की चटनी ऊपर दही से डाल दे, फिर खाने में स्वाद आ जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि व्रत में तो आलू बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उबला आलू और दही का रायता, फ्राई में फिंगर चिप्स, हर हाल में आलू बहुत अच्छा लगता है, समोसे तो आलू के बगैर ही नहीं सकते। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि आज ही मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनाना, कहते हैं कि डायबिटीज वालों को लाल आलू खाना चाहिए और उबले हुए आलू को 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद खाना चाहिए, जिसमें से आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि कटक का आलू दम दही बड़ा जिस किसी ने खाया उसे कटक घूमने आने का मजा आया। विश्व प्रसिद्ध आलू दम दही बड़ा के स्वाद सभी मुसाफिर के पेट भरने के लिए ये याद किया जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनकी फरमाइश होती थी कि फिंगर आलू बनाने हैं, तो सच कह रहे हैं, हम बनाते बनाते थक जाते

पर वो सब खाते जाते थे और तो और एक दो दोस्त भी आ जाते। वो दिन भी क्या दिन थे, आजकल तो मम्मी आलू ज्यादा नहीं खाने चाहिए ऐसा कहती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू तो हम लोगों के यहाँ पहले भी बोया जाता था और वो अगस्त सितंबर तक सब्जी का पूरा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके कम हो गया है। ये एक साथी लिख रहे हैं कि आलू भारतीय रसोई की रीढ़ है, इससे यदि इसे सही और संतुलित तरीके से जैसे कि उबाल कर या बेक करके पकाया जाए तो ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए बेहतरीन है। आलू भारतीय रसोई का राजा है जिसके बिना हर घर का भोजन अधूरा माना जाता है। स्वाद पोषण और उपयोगिता के मामले में भारतीय व्यंजनों में आलू का स्थान सबसे ऊपर है। आलू वाकई स्नैक्स का राजा है। ये इतना वर्सेटाइल है इसमें कोई भी लाजवाब डिश मिनटों में बनाई जा सकती है। तो फिलहाल अगला जो हम गीत सुनवा रहे हैं उसमें तो केवल आलू टमाटर का जो साग होता है उसे ही कितने इस तरीके से इसमें हम सुनेंगे इस गाने में कि भूख होती है तब तो वो चीज हमें और भी ललचाती है, लेकिन नहीं भी भूख हो तो बोलने का जो अंदाज है इस के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ आलू टमाटर का साग खा लिया जाए। संगीत किसका है बताइए हमें।

ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियाँ, कितना हंसी ख्वाब है। चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियाँ, कितना

उजाला फिल्म का गाना हमने सुना, शंकर जयकिशन का इसमें संगीत है। और ये सही बात है कि जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो सब्जी या कुछ चीज बना के ले वो आलू की होती है। आलू की सब्जी और पूरियां, या फिर मसाले वाली पूरियां, या फिर आलू के पराठे, या इस तरह की चीजें हम बना करके ले जाते हैं। या यहां तक कि हम जब सफर में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भी सबसे ज्यादा जो सब्जी आपको दिखाई पड़ेगी वो आलू की सब्जी ही होगी। एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का फरुखाबाद शहर के जो आलू होते हैं वो भारत में नंबर वन तरह के आलू होते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने जमाने और आज तक आलू बैंगन की सब्जी सबसे ज्यादा गुजरात के घरों में खाई जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि ज्यादा खाओगे तो एसिडिटी करेगा। जी हाँ, कोई भी चीज हो उसे अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि छोटे छोटे आलू को जाड़े के दिनों में हर घर में तापने के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें भूनकर बच्चे अक्सर कटोरी में नमक उसमें डाल करके खाते हैं। गरम गरम बड़ा टेस्टी होता है। पहले गन्ने की पेराई होती थी तो खोलते कढ़ाई में जब राब तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में गूंथ कर कढ़ाई में डाल देते थे। कितना मीठा और टेस्टी वो आलू के लिए जो है हम झगड़ा करते थे। अब तो गांवों में गन्ने की पेराई बंद हो गई है तो मीठा आलू भी अब नहीं मिलता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल लाल आलू बहुत मिल रहे हैं जिनमें कम मात्रा में स्टार्च होता है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोले जी बोलो तो क्या खाओगे, ये एक इस गाने के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सबसे सस्ता आलू है, जो सभी सब्जियों के भाव ज्यादा हो जाते हैं तो केवल आलू धनिया डालकर रसदार सब्जी चावल और रोटी के साथ खाने का जो मजा है वो बड़ा आता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बातें सुनकर हमारी बेटी ने भी फरमाइश कर दी कि अभी तो खाना बन गया है तो डिनर में आज मस्त आलू की रसेदार सब्जी जिसमें डाली हो थोड़ी सी केरी और उसके साथ हो जाए थोड़े से जीरा राइस, ऐसा इन्होंने लिखा। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की बात हो रही तो मुझे चूल्हे की आंच में सेक कर आलू बहुत पसंद आते हैं। जब कभी लंबी यात्रा पर जाता हूं तो मम्मी हमेशा ही आलू के पराठे और आलू की चटनी ही रखती है जो सूखी रहती है और आसानी से हम ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आलू की बातें तो हम कर रहे हैं, उसे चटपटे व्यंजन भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे कई साथी हो जिन्हें कुछ मीठी चीजें भी पसंद हो, जैसे बर्फी वगैरह इस तरह की चीजें भी तो उन्हें पसंद आती है। या फिर आलू से भी हम आलू की बर्फी भी बना सकते हैं। कई साथियों ने हमारे लिखा है कि आलू का हलवा बनाया जाता है, आलू की बर्फी भी बनती है। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं, बर्फी फिल्म का, स्वानंद किरकिरे के बोल, प्रीतम का संगीत है, आवाज किसकी है आप बताइए हमें।

मोहित चौहान की आवाज में ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम सब्जियों का राजा कह सकते हैं, एक ऐसी सब्जी जिसके सहारे हम कोई भी उत्सव मना सकते हैं, कोई भी त्योहार की शान बढ़ा सकते हैं। सब्जियों को खाने में मुंह बिगाड़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। गोभी आलू, मटर आलू, परवल आलू, कटहल आलू, टमाटर आलू, किसी भी कॉम्बिनेशन में सुपर हिट है आलू। समोसे में आलू, पराठे में आलू, पकौड़े में आलू। और एक साथी ने हमारी ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने आलू के महत्व को समझाने के लिए हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की थीम है जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है, और ये थीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों को सहारा देने में आलू की भूमिका को रेखांकित करती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि माँ के हाथ के बने आलू के पराठों का स्वाद अब कहां मिलेगा, आज आपने माँ की याद दिला दी। और एक साथी लिख रहे हैं कि भंडारे में आलू पूड़ी खाने का स्वाद तो खाने वाला ही जानता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मेरी बेटी पूना के एक घर में रहकर पढ़ रही थी, मैं कभी कभार 10-15 दिन के लिए जाती थी। उसकी सहेलियों को बहुत आलू के भरवां पराठे और दही का रायता बनाकर खिलाया था, आए दिन यही फरमाइश उनकी होती थी। चलिए धन्यवाद आपका। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, और देव कोहली के बोल हैं, अनु मलिक का इसमें संगीत है।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का ये गाना हमने सुना, और सचमुच जब समोसे की बात आती है तो ज्यादातर उसमें आलू ही डाल करके बनाया जाता है। आलू के बगैर समोसे का मजा हमें तो नहीं आता है, हो सकता है बहुत सारे साथी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखते हो। एक साथी हमारे लिख रहे हैं, उन्होंने आलू बोने का सबसे अच्छा तरीका जो है उसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण लिखा है, पूरा तो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो ये बात आपके काम की हो सकती है कि उन्होंने लिखा है कि सबसे अच्छा तरीका यह कि खेत में 3-4 बार गहरी जुताई करके और मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना ले, बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक जैसे कि कार्बेंडाजिम से उपचारित करें और बीज को मेड़ों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपे, जहां लाइन से लाइन की दूरी सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी इतने सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण इन्होंने लिखा है जो हो सकता है कि आपके काम का हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक ही इबारत रहती है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं। किसी को इसमें बहुत कुछ अच्छा नजर आता है और किसी को इसमें कुछ बिल्कुल नहीं भाता है, तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि अब गिलास पानी से आधा भरा है, इसे आधा भरा कहें या आधा खाली कहें, ये हमारी सोच पर है। वैसे सबसे जो अच्छी बात यह है कि इससे हमें बहुत सारे गानों के बारे में जानकारी मिलती। चलिए अब बात ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने जीवन में वो चीजें खाई होती है और हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपको आलू नहीं खाना है या मीठा नहीं खाना है या तला हुआ नहीं खाना है, और तब हमारे दिल में एक ही बात आती है कि हाय रे वो दिन क्यों ना आए कि जब आलू की इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनती। चलिए अनुराधा फिल्म का गाना सुनते हैं।

और अब एक बड़ी सुंदर बात, आलू का रस चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है, ऑलराउंडर है आलू, ये हमारी एक साथी ने बात लिखी है। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज की त्रिवेणी में बातें होंगी आशा की, उम्मीद की। आशा क्या है? वैसे तो इसे परिभाषित करना या इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन आशा को हम तब पहचानते हैं जब हम इसे महसूस करते हैं और जब हमें इसकी जरूरत होती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आशा है अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना और उसे पाने की कोशिश करना। हम सभी के जीवन में आशा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये निराशा से बचाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये एक सकारात्मक भावना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीवन का अर्थ, उद्देश्य और धैर्य प्रदान करती है। आशा कठिन समय में मानसिक शक्ति बनकर हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आशा एक भावना है और सोचने का एक तरीका भी। कई बार जब हम हर तरफ से थक हार चुके होते हैं, हमें आशा की कहीं कोई एक किरण कहीं ना कहीं से किसी बाहरी कारण से भी मिलती है, तब हम फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। मुश्किल हालातों से उबरने में आशा की ज्योत जलाए रखना बेहद जरूरी है। आशा को हमें एक इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आशा एक भावना है, एक मानसिकता है, जिसके जरिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन और प्रतिकूल क्यों ना हो, आशा एक विश्वास ही तो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।

आशा का अर्थ है आगे बढ़ते रहना, हिम्मत बनाए रखना और जीवन के अर्थ के साथ हर मुश्किल से उबरने का रास्ता खोजना। आशा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के बहुत कठिन समय में भी सहारा दे सकती है। यदि हम किसी विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम सकारात्मक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। कभी कभी हमारे दिलो दिमाग पर भय और निराशा आशा से कहीं अधिक आसानी से हावी हो जाती है। ये डर हमारे आशा के भाव को कमजोर करने लगते हैं। हालांकि हम अक्सर आशा को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, लेकिन आशा को सामूहिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है। राष्ट्र पर जब कोई संकट का समय आता है तब आशा और विश्वास का दामन थामे रहना आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आशा हमें भविष्य के लिए बेहतर कल्पना करने और उसे पाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करके जीवन को खूबसूरत बनाए रखती है, जिससे निराशावादी सोच दूर रहती है। आशा

दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय यदि मन में आशा हो तो मस्तिष्क अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। आगे बढ़ते रहने की ये इच्छा शक्ति, जिसे हम उम्मीद या आशा कहते हैं, ये जीवन को गति प्रदान करती है। इसीलिए आशा को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। आशा रखने से मन मस्तिष्क बेहतर ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि आशा अपने आप नहीं मिलती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें स्वयं से परे भी जुड़ना पड़ता है। आशा स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि भी हो सकती है। इसीलिए चाहे हम किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हों या चुनौतियों से जूझ रहे हों, पहले से कहीं अधिक आशा की जरूरत है, ताकि हम मजबूती से टिके रह सकें। आशा की एक किरण जीवन की मुश्किलों, असफलताओं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है, जिससे व्यक्ति हार नहीं मानता। आशावादी दृष्टिकोण से जीवन में बदलाव आते हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आशा हमें जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। आशा ही जीवन की वो धुरी है जिस पर सुखद भविष्य की कल्पना टिकी रहती है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां सुधर सकती हैं और आगे चलकर सब ठीक हो सकता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड

0: फॉनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजासुब्रमणी जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
3: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिले। स्वेरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर

0: पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मारतंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले

साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुँच चुका है।

0: रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमे नाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश के सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत है रवि का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना

0: सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: के धन्य जवानों अपने।

0: भाग दौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना। मोहम्मद रफी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाजों में शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

0: तुम।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग इस फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: याद सुहानी तेरी।
1: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अंजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस, पायल, श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम तो।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी, मीत, शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं के पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाजों में। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

0: इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाईकोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का, जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूँ। क्या आप?
1: मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा।

0: हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थी, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
1: ओह, डॉक्टर रामदास, गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
2: गुड मॉर्निंग बेनी, गुड मॉर्निंग।
3: कभी तबीयत कैसी है?
1: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं, अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
1: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
1: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
1: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
2: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है,
1: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
2: अच्छा,
1: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
2: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
0: नमस्ते डॉक्टर।
2: ओ नमस्ते,
1: कहाँ गई थी तुम?
0: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
1: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
2: मेरी पत्नी जी ठहरी, उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
1: हम दोनों के लिए।
0: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
1: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
2: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ हूं, फिर मिलेंगे।
1: अच्छा,
0: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं? हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं।
1: इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना?
0: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
1: इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
0: अच्छा जी, तब तो एक काम करें। इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें। इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: ख्याल है,
0: मुझे याद है। ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं।
1: हाँ शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: ठीक, इधर आओ ना।
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ले जाओ बेनी, ले जाओ ना तुम। अरे तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं,

0: बेनी एक बात बताओ।
1: पूछो।
0: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
1: बताऊं? दोनों।
0: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
1: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: तो आप कलाकार भी हैं?
1: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
0: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: नहीं, हाँ मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ।
3: तुम बेनी हो ना?
1: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
3: हाँ मैं लॉरेंस हूँ।
1: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
3: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
1: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका।
3: और मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
1: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
3: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हुआ?
1: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
3: यही कोई 14 या 15 साल।
1: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में। गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
0: नमस्ते।
3: नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
0: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
3: सब वो बातें रहने दीजिए आप। बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
1: चेस्ट में पेन है।
3: हाँ,
1: दिल की तरफ भी पेन है।
3: वैसे
1: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
0: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
3: हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
0: जी,
3: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
0: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
1: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
3: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
1: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
3: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
1: बाय।
0: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
1: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
0: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
1: अरे गिरिजा, तुम
0: आप यहाँ?
1: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
0: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
1: जरा शिष्टता से बात करो।
0: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
1: जरा आहिस्ता बोलो।
0: मुझे पहचान लिया आपने?
1: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
0: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
1: तुम ऐसा सोचती हो?
0: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
1: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
0: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। हा? इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
0: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
1: क्या?
0: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
1: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
0: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक चेहरा थे। चेहरर?
1: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है?
0: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
1: तुम इससे बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
0: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे,

0: उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
1: देखो मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
0: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
1: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
2: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रहे। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। दो तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
0: मुझे कुछ नहीं कहना है।
1: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूँ।
0: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
1: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझाकर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
0: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
1: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
0: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
1: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया, बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
0: अच्छा।
1: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
0: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
1: कितने रुपए खर्च हुए?
0: करीब 600, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
1: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकती हो, डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
0: क्या?
1: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
0: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
1: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
2: गिरिजा चली गई लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
3: वो बेनी कहाँ है?
2: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
3: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
2: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
3: डेजी मुझे कहते हुए दुख हो रहा है।

0: लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
1: डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर। उनके
0: अरे भाई अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
1: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
0: डेजी इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा, तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा, तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
1: नहीं मुझे ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
0: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो, बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे लो बेनी आ रहे हैं।
2: आइए आइए, कहाँ पे जाना?
3: ओ डॉक्टर
2: भाई, जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता।
3: इस पैकेट में क्या है? बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोज किया?
2: मेरी रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
3: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
2: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
3: लॉरेंस ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
2: और हाँ बेनी एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। I don't like it. अच्छा तो मैं चलता हूं अब। See you again. Bye.
4: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
3: तुम्हारे लिए एक चीज है।
4: अच्छा देखो तो।
3: लो देख लो।
4: साड़ी, ये अब काहे को, और यहाँ
3: मेरी ओर से प्रेजेंट।
4: प्रेजेंट?
3: हाँ तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
4: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो बेनी? हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
3: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर साड़ी पसंद आई?
4: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
3: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझ हो, तुम अगर ऐसे ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं रो मत। देखो अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो रूठ जाऊं? नहीं नहीं ना। अच्छा तो फिर हंस दो। देखो ये ऐसे ऐसे।
4: अरे क्या क्या हुआ आपको? ठीक है ले गई बेनी, बेनी, बेनी। कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा। लेकिन मेरा सुख

0: 전 방골다. 싸싸싸 팥먹이야. 저태든 메라 메니 스월크세 나르게.
1: 오, 노.
0: 싸다오 길리에 묻은 피치울게.
1: 아히르게 후아 깨시.
0: ऑपरेशन के बाद एक दिन मेरी हृदय में दर्द उठा, सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। पांव बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे, मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
2: केसी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
3: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
2: दुख तो मुझे भी है केसी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत दुख का किया था।
3: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
2: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे पेड़ी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
3: गिरजा
2: डेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठ कर बातें करेंगे।
0: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस, विवाह सूत्र में बंध गए।
1: अच्छा?
0: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
4: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
5: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
6: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
5: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
7: बधाई हो बधाई, जन्मदिन की तुम।
5: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
7: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे

0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ है अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा। इनसे बातचीत कर रही है विधि जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष है जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते या हमारे परिवार की बेटियां बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओ चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी

0: आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है?
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली बदमाश
0: जी
1: प्रैंक करने वाली
0: वो
1: मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है,
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ घर में भी,
0: हाँ।
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको, सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो। और जो विर्ज खिलाई अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
0: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं।
1: कर रही हैं।
0: और गुंजा
1: करती रहूंगी।
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
0: अच्छा।
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
0: जी,
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
0: अच्छा।
1: आपने तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
0: जी।
1: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
0: जी,
1: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
0: अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि
1: हाँ,
0: आप अभिनेत्री बनेंगी।
1: हाँ।
0: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
0: अच्छा।
1: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
0: जी,
1: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को। और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
0: तो अच्छी बात है, लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि साधना गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
1: देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
0: क्या
1: है ना। तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उस समय आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
0: उतनी बुलंद आवाज।
1: हाँ, बुलंद आवाज थी
0: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना
1: चाहती हूं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थी, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूं कि आपने मंच में नृत्य अभिनय बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए हों।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए। अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत तो घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की है उस जगीरा में, हमने देखा
1: जगीरा में मार खा के की हूँ।
0: वो किस्सा भी जरा बता रहे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था। मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना, लेके डंडा मारा पैर में। एकदम ठीक कर दिया मैंने।
0: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत क्या
0: लाठी के भूत
1: लाठी के भूत मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी।
0: बद्री जी को धन्यवाद थी, उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया।
1: और क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
0: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक कटक के डांस किया उसने। फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बन जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा,
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे। तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ।
0: हाँ,
1: तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
0: अच्छा,
1: हाँ ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता। पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सचिन। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
0: अच्छा,
1: तो 2-3 चीजें ये सीखे कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है।
0: हाँ,
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती है। तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया
0: जी।
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए। तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया, कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
0: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए ऐसा आपका कहना है। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
1: एक
0: ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
1: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
0: हाँ
1: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
0: जी,
1: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
0: जी।
1: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होकर प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
0: जी,
1: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं
0: जी।
1: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
1: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ, ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ। हाँ,
0: जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं।
1: हाँ,
0: तो मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए।
1: अच्छा, ऐसा
0: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो
1: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग अच्छे लगते हैं। तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं।
0: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
1: और बहुत मीठा संगीत है।
0: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं खूबसूरत सा नगमा।

0: गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई है, मस्ती के साथ सब करती गई है और उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं। तो
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी। और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी
0: जी।
1: तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी, और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं।
0: हाँ।
1: तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है।
0: जी, जी जी
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
0: जी।
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा

0: सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा जी। लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
1: नई
0: प्रोडक्शन में
1: जी जी।
0: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है
1: हाँ।
0: बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
1: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
0: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
1: अच्छा।
0: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
1: जी।
0: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत
1: सारा लड़कियों से गिरी रहती थी
0: हाँ, तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
1: जी।
0: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे हाँ।
1: नहीं वैसे आप बहुत हॉट है हाँ। शॉल की जरूरत नहीं तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद जी।
0: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
1: जी,
0: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई हैं उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकराभरणम फिल्म आई थी
1: जी,
0: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकराभरणम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
1: जी,
0: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धरता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह वहाँ, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल लेकिन वो ले गए
1: जी।
0: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई, मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम, ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन टू मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं,
1: वही सेम फिल्म,
0: हाँ सेम फिल्म लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल, मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी जुड़ना ऐसी फिल्म
1: जी,
0: से
1: जी।
0: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
1: जी,
0: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन हाँ तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
1: जी,
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद
1: हाँ। जी जी उसके बाद ही
0: हाँ, तो मस्ती में की बस और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
1: जी,
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
1: अच्छा।
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
1: जी,
0: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, तो वो फिल्म की। उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्म नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी
1: हाँ।
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी फिर बच्चों को देखना ये सब
1: जी, जी।
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो पिछले 5 सालों की जुगनी
1: जी, जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
1: बहुत
0: है
1: अच्छी
0: हाँ। तो ये नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब
1: हाँ।
0: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
1: जी।
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल।
1: अच्छा
0: हाँ, तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
1: मिलके काम कर रहे हैं पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं।
0: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको ये साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ, तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
0: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा
0: हाँ, क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे
1: हाँ।
0: कि ऐसा ही करना है। और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए बोले, हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
1: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा।
0: पति का नाम राजकुमार
1: ही नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: अच्छा, मैं हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं

0: अच्छा मैं हम जानना चाहते हैं वो किस्सा
1: वो किस्सा मैंने बताया भाई, किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा नहीं करूंगी। तो ये बिहार व्यार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम और मिलने आए, तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने। तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने, इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतनी गुस्सा है, बोले शादी करके बताता हूँ इसको कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
0: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
1: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर।
0: हाँ।
1: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
0: अच्छा,
1: फिर
0: वही लड़की हीरोइन चाहिए। हाँ। थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी।
1: होता है ना दिमाग में शादी, फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
0: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
1: ये रात भीगी भीगी।

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो वाली की है ना, गंगा मैया तो है,
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ही प्यारी चढ़ाई वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको
0: इतना लाइक तो नहीं लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी
0: जी,
1: लेकिन
0: बहुत प्यारी है।
1: हाँ,

0: वो बहुत अच्छी फिल्म है।
1: एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहां की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी?
2: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
1: अच्छा।
2: हमें अपनी जो बाइयां आती थी उन सबसे तो
1: मतलब अब वो चाट और लस्सी खाते पीते
2: हाँ। जी। क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
1: अच्छा।
2: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
1: सरदार खड़े हैं और
2: तो हमारे पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
1: अच्छा।
2: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
1: जी,
2: हाँ ये काफी फर्क है
1: जी।
2: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है। हाँ। अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या?
1: अच्छा,
2: ऐसा था।
1: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को गुंजा को कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे?
2: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते हैं
1: जी,
2: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजा रे चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था और थोड़ा अलग था चंदन चंदन ऐसा
1: बहुत,
2: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
2: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
1: रविंद्र जैन वहाँ पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा। हाँ। कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते?
2: बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा। अगर आप
1: जी बहुत खूबसूरत गीत है
2: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे
1: जी,
2: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: हाँ, बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो,
1: बट जितना था सब भरा हुआ था। और उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे।
1: भैया मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था। उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने,
1: 30 गाने में, और सुना रहे थे पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे। अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है। साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी माई गॉड। उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
0: शब्द भी लिख लेते थे
1: एक सेकंड में।
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 32 होंगे 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगातार।
1: दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया। तो उनसे
0: और कहीं लिखा नहीं जा रहे क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राजबाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती, मैं तुमसे गवाता।
0: ये रविंद्र जी
1: हाँ, क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
0: जी। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो आनंद ही अलग आता होगा।
1: वो तो

0: इतनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है, क्या बोलना है.
1: अच्छा,
0: तो आई थिंक वो अखड़पन में सब कुछ सीख गई.
1: हाँ,
0: अल्लड़पन कहते ना,
1: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता.
0: हाँ,
1: दी गई.
0: ये बात है. मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो.
1: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना. बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं. और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे घूमते?
0: नहीं नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे. तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी.
1: हाँ.
0: तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था.
1: अच्छा,
0: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें. लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है. तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे. तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो, अगर अच्छा है तो.
1: अरे वाह,
0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी.
1: हाँ.
0: तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
1: बोल दिया.
0: मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो.
1: यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों जगह.
0: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
1: जी,
0: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहे
1: जी. बिल्कुल. साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है. पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है. तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
0: नहीं नहीं, मेरे बेटा तो बहुत दूर है.
1: अच्छा,
0: उसको फेमस नहीं होना है. वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
1: जी.
0: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की है
1: जी.
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
1: जी,
0: अनुपम जी ने.
1: बहुत बढ़िया.
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर, जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए. तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई.
1: हाँ, तो उस समय वो चल,
0: फिर वो उसको मिला उधर काम. फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना, कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है. आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं.
1: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
0: नहीं, मैं करती भी नहीं. क्योंकि
1: मेहनत करो अपनी.
0: हाँ, अपनी मेहनत करो,
1: ये बहुत अच्छी बात है.
0: क्योंकि मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं. बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
1: जी. लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूं, तो मैं समझ रही हूं कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं. तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूंगी. मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं.
1: अच्छा.
0: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना, ये सुपर 30
1: जी.
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग. मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%.
1: हाँ,
0: अब देखते हैं क्या होता है.
1: जी बिल्कुल होगा. आपने कह दिया, सोच लिया.
0: हाँ.
1: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती है.
0: हाँ,
1: ऐसा हम मान के चलते हैं. बिल्कुल, ये जगह बड़ी बड़ी पवित्र लोग यहाँ पर आए हैं. आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है.
0: हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
1: जी,
0: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते ना. बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई. और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं. बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ.
1: ऊर्जा सकारात्मक

0: हाँ वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है,
1: हाँ
0: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में है, या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊं या मर जाऊं।
1: अरे
0: हाँ मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीजें हैं कि मुझे
1: समस्या
0: ऐसा
1: समझ
0: लगा
1: रही
0: कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए।
1: हूँ।
0: लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और
1: क्या
0: फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था,
1: बात है।
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमोसफियर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है वो, क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई है तो कुछ गाने हम भी
0: मैं
1: सुन
0: एक
1: लें।
0: कोशिश करती हूँ, चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है।
1: जी
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है,
1: जी
0: उनका गाना गा देती हूँ।
1: जी

बाहर की बस एक छांव जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की बस एक छांव जुल्फ की बस एक निगाह

0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं
0: जी।
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ, हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम ये ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी नहीं,
1: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती है माए
0: जी।
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगे जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई
0: जी।
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि हाँ। आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है।
0: हाँ।
1: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहनने से मुझे याद आया मैंने ब्रांड भी शुरू किया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके। अच्छा। और साड़ियां वीव्स वगैरह, मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है ये, ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी है पहेली
0: जी,
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है।
0: अरे वाह।
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब देखें।
0: फिल्म है कैसी है पहेली,
1: कैसी है पहेली,
0: जरूर से हम सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है। और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
1: अच्छा लगा मुझे भी। अच्छा लगता है विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता अच्छा है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है। तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मोबी टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का नया चैनल है। शाम के 5 बजे है प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले सुनते हैं आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। थोड़ी देर में 5:05 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे जुल्फिकार हिताबाला की आवाज में गाए राजस्थानी गीत। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे शाम 5:30 पर और रात 9 बजे हमारे मुंबई केंद्र से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनाए जाएंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से 6:30 से। शाम 7 बजे का समय रहेगा किसान वाणी का। इसके अंतर्गत ग्रामीण श्रोता सुनेंगे चर्चा बातचीत लोक भजन और बाजार भाव। जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे 7:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या सुनवाई जाएगी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और रात 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 11 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचार का आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये तो था आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण और अब एक नजर हमारे कल के

कल सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से, 6:05 पर चिंतन आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से, यहीं से 6:10 पर वंदना सुनवाई जाएगी। हमारे स्टूडियो से 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस का, 6:45 पर होगी खेती में बात, 6:50 पर आप सुनेंगे आदिवासी लोक संगीत, 7:20 का समय रहेगा वातायन का। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, सुबह 9:30 पर और दोपहर में

आज आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारे स्टूडियो से कुछ देर से प्रोग्राम होगा सुबह 8:45 पर। राजस्थानी लोक संगीत सुनाया जाएगा 8:45 पर। 9:00 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से। 9:10 पर आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से सुगम संगीत।

सुबह 11 बजे आप सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल शाम 5:05 पर आप सुनेंगे बच्चों के मुख से कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे जानकारी, चर्चा और गीत। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से आप सुनेंगे शाम 5:30 पर रात 9 बजे हमारे मुंबई केन्द्र से। 6:30 पर आप सुनेंगे हिन्दी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केन्द्र से। यहीं से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे। चौपाल का समय रहेगा 7 बजे। इसके अंतर्गत ग्रामीण श्रोता सुनेंगे चर्चा बातचीत, लोक भजन और बाजार भाव। जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर

गंज से आप सुनेंगे 7:30 पर, 8:45 पर समाचार संध्या सुनवाया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये तो था कार्यक्रम विवरण।

FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी 500 पर मणि चैनल है। 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत। आइए सुनते हैं इसके अंतर्गत जुल्फिकार हीतावाला की आवाज में गाए राजस्थानी गीत। तो पहले सुनते हैं ये गीत।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आप राजस्थानी लोक संगीत सुन रहे हैं जुल्फिकार लोधावाला की आवाज में। आप सुनते

राजस्थानी गीत सुना। इसी के साथ राजस्थानी लोक संगीत यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का हमारी चैनल है। 5:30 होने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
3: तराने नए पुराने।
0: तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं, आपके रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म हीर राजा के गाने से। लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद

आशिकी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। रानी मलिक के बोल थे, नदीम श्रवण का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। चलिए अब सुनते हैं जिंदगी जिंदगी फिल्म का गाना सचिन देव बर्मन की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: हम बोल रहे हैं विविध भारती से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम बॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग, और ये है मुल्क फिल्म की कव्वाली शफकत अमानत अली और साथियों की आवाजों में शकील आजमी के बोल, अनुराग साइकिया का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 बीईएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता, सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।

0: तराने नए पुराने
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अब आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: तंबाकू जानलेवा होता है, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 बीईएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले

0: कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यही चैनल है। 6:30 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
2: कहा भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आम जन बीच की धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित।

इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। वे आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जनरल द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, यह अभियान अब भी जारी है। जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंगभेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान को खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाना जाना चाहिए। श्री चौहान आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री ने अभियान के तहत पंचायत स्तर पर मशीनों के वितरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून तक देश भर में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों के साथ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और पारदर्शी तरीके से ही कराए जाते हैं। व्यास नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1 जून से जयपुर में शिविर लगाए जाएंगे। 3 दिन चलने वाले इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों को द्वितीय ऋण की किस्त स्वीकृति और वितरित की जाएगी। ये शिविर जयपुर नगर निगम और एक निजी बैंक के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। इसे स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण

0: श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के महाअधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता में भी नगरपालिका कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। श्री शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग करीब हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व तो और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी, अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिका के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में भी सभी की भागीदारी को आवश्यक बताया। महाधिवेशन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के डी रेगुलेशन फेज वन के तहत किए जा रहे सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि राज निवेश पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाकर समयबद्ध निस्तारण के प्रयासों से राजस्थान निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। अप्रैल 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज निवेश पोर्टल पर प्राप्त 9000 आवेदनों में से 6000 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है। आवेदनों को मंजूर करने के मामले में राज्य में जयपुर जिला पहले स्थान पर रहा, जहां लगभग 2000 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1300 से अधिक आवेदन स्वीकृत हुए। पुलिस मुख्यालय ने पुलिसिंग में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 123 पुलिस कार्मिकों को महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल देने की घोषणा की है। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, प्रशासन तथा उत्कृष्ट पुलिस सेवा के लिए चयन समिति की अनुशंसा पर इस वर्ष कुल 123 अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है। इनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परेश देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सिरोही जिले के एक विश्वविद्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, योग साधकों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया तथा योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की शपथ ली। नागौर शहर के पास जोधपुर बीकानेर मार्ग पर आज दोपहर एक कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा डुकोसी और राजुवास गांव के पास हुआ। दुर्घटना में कार में सवार 2 महिलाओं और एक बच्चे सहित 4 की मौत हो गई। सभी मृतक जोधपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रदेश में धूल भरी आंधी का दौर आज भी जारी रहा। सीमावर्ती और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आज दोपहर बाद अचानक आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिलों में अचानक बदले मौसम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेतीले अंधड़ की शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र से हुई, जिसके बाद इसका प्रभाव आसपास के जिलों तक फैल गया। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि दोपहर बाद आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
2: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहां तेज धूप और गर्मी का असर रहा, जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधड़ आया। तेज रफ्तार से हवाएं चली, जिससे लोगों के टिन शेड उड़ गए हैं। तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए। गाँव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वही तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: प्रदेश में कई स्थानों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इस दौरान कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के पोल धराशायी हो गए। राजधानी जयपुर में भी शाम को बादल छाए रहे। बिजली कड़कने के साथ ही धूल भरी आंधी

चली और कहीं कहीं बारिश हुई। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होने की सूचना है। पिछले दो दिनों से जारी आंधी बारिश से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज करीब 30 जिलों के लिए आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने के आसार जताए हैं। केंद्र ने आंधी और तेज हवाओं, बिजली चमकने के साथ लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आंधी बारिश का ये दौर अगले 3-4 दिन जारी रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का पहला चरण पूरा हो गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भवन का नवीनीकरण, प्रवेश और निकास मार्गों का पृथक्करण, नई पार्किंग व्यवस्था, बुकिंग कार्यालय और रिटायरिंग रूम का उन्नयन किया गया है। इस काम में लगभग 20 करोड़ रूपये की लागत आई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आमजन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूसरे दिन भी धूल भरी आंधी का दौर जारी। सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कप्तान खान कलर ने तैयार किया है। जालौर जिले को बीते महीने महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। वहीं भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने जिले का दौरा कर आमजन के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों जालौर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिले में रात्रि विश्राम कर चौपाल लगाई। पंचेरी गांव में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद किया और सरकार की योजनाओं का धरातल पर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए आम जन से इनका अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं और लाभार्थियों से संवाद कर उनसे सफलता की कहानियों को सुना। उन्होंने गांव का पैदल भ्रमण कर जायजा लिया और लोगों के साथ चाय पीकर चर्चा की। ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और जीवाराम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जालौर को दिल्ली से सीधा रेल सेवा से जोड़ने की लंबे समय से चली आ रही जिलेवासियों की मांग बीते दिनों पूरी हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में जालौर से होकर गुजरने वाली दिल्ली भुज एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की। उन्होंने जालौर पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस गाड़ी का जिले के रानीवाड़ा, मारवाड़, भीमाल, मुदरान और जालौर में ठहराव होगा। रोजाना चलने वाली इस गाड़ी से जालौर वासी अब जयपुर और दिल्ली से सीधे जुड़ेंगे। वहीं गुजरात के भरूच, अंजार और गांधीधाम तक भी सीधी पहुंच हो सकेगी। गाड़ी की शुरुआत होने से आमजन में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गंगा दशमी के अवसर पर 25 मई से शुरू हुए इस अभियान के दौरान आदर्श अमृत सरोवर बागोड़ा पर श्रमदान रखा गया। जिला स्तरीय आयोजन में प्रभारी मंत्री के विश्नोई शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक मजबूत संकल्प है। अभियान के तहत जिले भर में रोजाना श्रमदान और जागरूकता गतिविधियों के साथ जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। हरियालू राजस्थान के तहत जिले में इस सीजन में 19 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने ये जानकारी देते हुए

0: आमजन से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। श्री बिश्नोई ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बागोड़ा स्थित खेतलाजी तालाब पर पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी सिलसिले में बीते दिनों आहोर में संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। अभियान में पशुपालन विभाग की ओर से जिले की 308 गौशालाओं में स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। जिले के भेटाला में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के तहत तंबाकू और नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। ग्रामीणों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। जालौर जिले में मतदाताओं द्वारा स्वगणना पोर्टल पर जनगणना जानकारी दर्ज की गई। 1 से 15 मई तक चले स्वगणना अभियान के तहत अब जनगणना कर्मी लोगों के घर घर पहुंचकर सूचना अपडेट कर रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए आवासों की सूची, सुविधाओं, संपत्तियों और अन्य आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही मकान पर नंबर लिखने का काम किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय परिसर में पिछले दिनों एक दिवसीय प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से लगाए गए इस शिविर में 110 बेरोजगारों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया गया। जिले भर में इन दिनों सूरज अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बढ़ते तापमान के साथ गर्मी के तीखे तेवर बने रहने से आमजन के साथ पशु पक्षी भी व्याकुल हो रहे हैं। अधिकतम तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने से दिन के समय बाजार और सार्वजनिक स्थान सूने दिखाई दे रहे हैं। जालौर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार।

जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो भारत की फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावण सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल सवेरा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारियों ने सरकार जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश माए आज दूजा दिन ही धूलो उड़बा सागे आंधी चाली सरहदी हलका माए रेत रात तूफान और जिंदगी माथे असर पड़ियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि भारत री फौज आला दर्जा री सावचेती राख रही है और जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर शुरू करें बाबत ही तैयार है। वह आज पुनेरा खड़कवासलारी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी माए 150वां बैच री पासिंग आउट परेड माए बोल रहा है। ई मौके जनरल द्विवेदी कहो कि ऑपरेशन सिंदूर उकसावा रो जवाब सटीक और पक्का इरादा सागर देवण रा भारत रा बूता रो दर्शाव कीनो है। वह कहो कि ओ अभियान हाल ही चाल रियो है। जनरल द्विवेदी पास आउट वेवन वाला कैडेटाओं व्यावसायिकता नेतृत्व और देश सेवा रा आला मानका ने बनाया रखन बाबत कहो। फौज रा मुखिया ई कोर्स में पास करने वाली महिला कैडेटा ने सराहना करता था का कहो कि हिम्मत पक्का इरादा और फौजी बेहतरी बगैर लिंग भेद रो गुण है। अकादमी 353 कैडेट स्नातक री डिग्री हासिल कीनी। इस आगे दोस्ताना रिश्ता वाला देशा रा 21 कैडेटा ने ही डिग्री दी रीजी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत बचाओ अभियान में खेता किसाना और गांवा ने जोड़बा रो मोटो अभियान बनावन बाबत कहो है। श्री चौहान आज नई दिल्ली माए खेत बचाओ अभियान री तैयारियां ने बारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। वह कहो का इन अभियान रो मकसद खाद ने बुद्धिमानी काम लेवन किसाना ने मौसम में जुड़ी जानकारियां और राय टेम सर देवन और न्यारी न्यारी सरकारी योजनाओं रो फायदो गांवा री जनता ताई सीधो पुगावनो है। खेत बचाओ अभियान 1-30 जून ताई आखा देश में चलायो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाश

0: हर महीना प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात में काल समारा 11 बजे विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम दी 134वीं कड़ी फैला। इरो प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री रा दफ्तर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल सागे न्यूज ऑन AIR ऐप मा थई करियो चावेला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहो है कि देश में चुनाव संविधान चुनावी कानून रमुजब हर साफ कोई सागे कराया जावे है। वे आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग री नुमाइंदगी करने वाला वकीलों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहो कि लोकसभा चुनाव के दौरान साफ कोई जवाबदेही और निपक्ष तरीका वोट देने तय करने सारू करीब 1,08,00,000 सरकारी कर्मचारी तैनात किया जावे है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE रो पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून काम करने लगेला। विद्यार्थियों की परीक्षा री कॉपियां रा सत्यापन और उजू जंचावन री साफ प्रक्रिया तय करण सारू वो पोर्टल शुरू करियो जा रहे है। जयपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रा तहत पात्र रेहड़ी पटरी वाला ने कर्ज मुहैया करावन सारू नगर निगम और एक गैर सरकारी बैंक कानू मिलर 1 जून खास शिविर लगाया जावेला। 3 दिन रा अ शिविर में पात्र लोगों ने कर्ज री दूजी किस्त दी जावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक में थे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नगर पालिका में काम करण वाला ने सरकारी योजनावां री जानकारी जनता ताई पहुंचावण रा काम में खास कड़ी बताया है। वे आज जयपुर में राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन रा महाधिवेशन में बोल रहा है। मुख्यमंत्री कहो कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन री कामयाबी में आई नगर पालिका कर्मचारियों रो खास काम रहो है। श्री शर्मा कहो कि स्वच्छ भारत अभियान देश में साफ सफाई रा काम ने जनता रो आंदोलन बना दिनो है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप वो कड़ी हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिका के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं।
0: मुख्यमंत्री विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 रो संकल्प सांचो करण माए सगड़ा री भागीदारी ने जरूरी बताई। कार्यक्रम माए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य रा नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्राई मौजूद रहा। प्रदेश माए निवेश सारू राज निवेश पोर्टल माथे मिली 9,000 अर्जियां मायो 6,032 मंजूर कर ली रिची है। अर्जियां मंजूर करण रा काम माए जयपुर प्रदेश माए अव्वल रहो, जठे मिली करीब 2,000 अर्जियां मायो 1,332 ने मंजूरी दे रिची। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आ जानकारी दीनी। पुलिस मुख्यालय बेहतर काम करण वाला 123 अहलकारा और कर्मचारियों ने महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल नवाजन रो ऐलान किनो है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा री ओर निकाली जिया हुकमरा मुजब पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक सिपाही लेवल ताई रा अहलकारा और कर्मचारियों रो मान करियो जावेला। नवाजी जावन वाला अहलकारा माए पुलिस री सिखावन देवन रो काम देख रहा अतिरिक्त महानिदेशक HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परिस देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह शामिल है। 21 जून में मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला में प्रदेश में आई नैरी नैरी ठोड़ा योगाभ्यास रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। आज सिरोही जिला रा एक विश्वविद्यालय में योगा

0: अभ्यास रो कार्यक्रम राखी छो एमा विद्यार्थी शिक्षक और जनता उमाव सागे भाग लीनो और योग ने रोजमर्रा री जिंदगी रो हिस्सो बनावन री सौगन लीनी। नागौर कन्ना जोधपुर बीकानेर गेला माथे आज दोपहर कार रे ट्रक री फेंट माया जावनो चार जना री मौत हुएगी। पुलिस रमजब डुकोसी और राजूवास गांव बीचे व्या हादसा रे कारण कार में सवार दो महिला और एक बच्चा समेत चार जना री मौत हुएगी। अरब मौसम प्रदेश रा पाकिस्तान की सरहद लागियोड़ा और उत्तराद आतुनी हल्का माए आज दोपहर निपोर जोरदार रेतीलो तूफान आयो। श्रीगंगानगर बीकानेर चूरू हनुमानगढ़ और सीकर जिला में आई जोरदार आंधियों दिन माई अंधारों महसूस हो लगो। रेत रात तूफान रे शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिला भी जो थोड़ी देर माई आई सारा रा मोटा हल्का माए पसर क्यों। महा चूरू खबर नवीस बतायो कि रेत रात तूफान जिंदगी माथे घनो असर पड़ियो।
1: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहां तेज धूप और गर्मी का असर रहा जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधर आया। तेज रफ्तार से हवाएं चली जिससे लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं। तेज अंधर से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए। गाँव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: कई थोड़ा 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा रे रफ्तार रो बायरो बाजो जिनो धुआरो गुबार छा जावन रे कारण दूर तक नजर नहीं आयो। इस दौरान लोगों ने दिन में ही गाड़िया ने लाइटा चासनी पड़ी। जोरदार बायरो बाजो कई थोड़ा रोखड़ा टूट गया और होल्डिंग्स उखड़ गया और बिजली री पूर्ति माथे असर पड़ियो। राजधानी जयपुर में आई सिंझानी पोर बादला मंडी गया, धुआं उड़ियो, आंधी चाली और कठे कठे बारिश हुई। आंधी बारिश हो पारो 10 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। मौसम केंद्र जयपुर प्रदेश में आज करीब 30 जिला सारू आंधी बारिश सागे कठे कठे ओला पड़ बारा आसार चताया है। केंद्र आंधी चालन जोरदार बायरो बाजन और बिजली चमकन री बगत सावचेती राखन सारू कहो है। मौसम केंद्र रे मुजब आंधी बारिश रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहवन री संभावना है। श्री गंगानगर जिला रा सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन में और बेहतर बनावन रा काम रो पहलो दौर पूरो फेंक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन बतायो कि अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत स्टेशन भवन में बेहतर बनावन, स्टेशन में दाखिल भेवन और बाहर जावन रा न्यारा न्यारा दरवाजा बनावन, गाड़िया उभी करण री नवी व्यवस्था विकसित करण समेत कई खास काम करी चा जा माथे करीब 20 करोड़ रुपया रो खर्चो आयो। इस आगे वठे करीब 10 करोड़ रुपया रा खर्चो 12 मीटर चौड़ो पैदल पुल बनाया जा रियो है और सूरज री रोशनी 50 किलोवाट बिजली पैदा करण री मशीन आई लगाई जा रही है। आखिर में खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो भारत री फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावन सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात में विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारियों ने सरकार और जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूजा दिन ही धूलो उड़वा सागे आंधी चाली। सरहदी हल्का में रेत रात तूफान जिंदगी माथे असर पड़ियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: FMBN 101.3 MHz पर आकाशवाणी 500 का यह चैनल है। शाम के 7 बजे है और प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

소라디오 YG가 있는 암강 기상다이어도 그 서로 불을 부족하고 한 적은 없다니 나라도 불밭 모성 밑으로 बदलेगी तो हवा में तूफान में हते कुछ जगह बारिश भी पड़ी है। किसान भाई देखो आने देखते हम लगे के ऊना भर में मानसून थोड़े जल्दी आ भी पड़े वो लगे है। पर किसान भाई ने कहा कि देखो इना पहले आपने सारी तैयारी और देखी बुआई जो है एक आपने कर लेगी जो खेतर में तैयारी है, बीज की व्यवस्था है, खातर भी व्यवस्था है, खातर के थको आवेगा, बीज के थको आवेगा, के थको लावेगा, केवा प्रकार में बीज में कया खेतर में होम कर हुए है, आज सारी व्यवस्था है अपने अवृत की देखनी पड़ेगा। किनके जगह पानी पड़ गया ना होड़ा उड़ी रहे दौड़ रहे इन बिना किसान भाई भी होच पोच में पड़ जाए कि कया खेतर में बीज के वादी आवे के पैदी आवे ने बीज के थको लाभ खातर में व्यवस्था के करनी ने अगर योजना में अनुसार आपने पहले स्थिति तैयार थी जाए जब आपने वीआ वाजन में कि तैयारी कर लिया पहले इन खेती बाड़ी में आप बुआई में जो सीजन आवे एक प्रकार का वीवा है तो वीवा की तैयारी आपने बे महीने पहले से कर रहा इनमें आ जिनके कृषि यंत्र की तैयारी रखनी पड़ेगा जो जरूरत पड़े आपने सिद्धि की जरूरत पड़े है या अन्य बीजा कया भी एवं काम है जो योजना में अनुसार आपने पहले तैयार कर लेना जरूरी है। देखो किसान भाइयों इन्हें हटे हटे आप बगीचा बागवानी देखभाल आपने करनी पड़ेगा। अगर जो आताप पड़ी रहे ना जो भाई है बगीचा कर जाए चाहे आम वृक्ष करी मिले और कैरियर जो अवस्था है ये तूफान में कुत्त पड़ी आई है ने, फिर भी किसान भाइयों ने अगर जो आना समय में अगर कैरी छोटा रूप में हो तो आप बगीचा में पानी भी आनी सको ने आ व्यवस्था भी अपने करनी पड़ेगा। किसान भाई देखो आज एक विश्व आलू दिवस भी है जे अपने किसान भाइयों आ अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस हर साल 30 मई ने दाड़े मना रहे हैं तो इन्हें ऊपर भी अपने थोड़ी सी चर्चा करी रहे हूं। देखो संयुक्त राष्ट्र में खाद्य ने कृषि संगठन अभी थकी आलू दिवस ना मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा पोषण ने गरीबी उन्मूलन में आलू ने महत्व ने उजागर करवो मुख्य है। आप सब जानो हो आलू में सब्जी भी खाई रहो तो आलू में जो मुख्य लाभ है इन्हें बात करो तो आलू में ऊर्जा में कार्बोहाइड्रेट हारू आ एक बेहतरीन स्रोत है। आने हाथे विटामिन ने फाइबर अने विटामिन सी जे रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ावे है। विटामिन B6 एने थकी मस्तिष्क लाभ भी थाए है ने पोटेशियम की मात्रा थकी हृदय स्वास्थ्य भी प्रचुर मात्रा में थाए है तो आलू खावा थकी आटला मुख्य लाभ अपने थी सके। किसान भाई आम मौजूद आहार फाइबर थकी पाचन तंत्र भी मजबूत ने पाचन करवा में भी सहायक थाय है। आ एक इन फसल है जिन्हें लाखों लोग सेवन करे हैं। हर घर में आलू की सब्जी बनी है आलू ना व्यंजन बने हैं लेकिन चीन हवे विश्वना सबसे मोटो आलू उत्पादक देश बनी गयो है ने इन्हें बाद भारत रूस ने यूक्रेन नाम भी आवे है। किसान भाइयों एक सामान्य कच्चा आलू में 79% पानी 17% कार्बोहाइड्रेट जिन्होंने 80% स्टार्च भी उपलब्ध है इन हजाते 2% प्रोटीन ने 2% अन्य रसायन भी आलू में मिले हैं। आना में वसा की मात्रा तो नगण्य रहे कच्चा आलू में विटामिन B6 में विटामिन सी में उच्च मात्रा प्राप्त थाय है लेकिन आने पकावी में खावा थकी आ मात्रा कम थी जाए। किसान भाइयों आलू ना पौधा

40 इंच या पसंद इनके शिखर होकर 50 तक ही हो सेंटीमीटर में ऊंचाई तक रहे हैं। आड़ा ऊपर लागिया तक फूल जे हैं ये सफेद या पसंद बैंगनी रंग में भी आवे हैं। आली पत्तियों छोटी छोटी पत्तियों ना रूप में भी विभाजित थी जाए हैं। आलू ना पौधा भूमिगत तमा कहवाए ने आलू ने अक्सर सिर्फ वजन बढ़ाबा वाली सब्जी माने हैं, बल्कि वास्तव में तो आप पोषक तत्वों की भरपूर खजानों है। उचित मात्रा में सही तरीका जिनके उबाली या आप भूमि में आनी सब्जी या आना व्यंजन खा या आने खावा थकी ऊर्जा प्रदान थाय है। किसान भाइयों ऊर्जा ने मिल है इन हते हते पाचन भी सुधार करे है। एक बात बीजी है कि आजकल देखो हर व्यक्ति ने ब्लड प्रेशर में शिकायत रहे है, बीपी हाई सब्जी बीपी हाई सब्जी हर कोई हर तीसरे व्यक्ति के अगर बीपी हाई है बीपी लो है तो ब्लड प्रेशर में नियंत्रित करवाने भी आलू मदद करे है। आलू थकी भी घना सारा व्यंजन बने हैं जो बाजार में भी उपलब्ध है। आजकल हर सोरो आलू में चिप्स थकी खुद थी गया है सोरा हूं मोटा भी खुश थी जाए। तो आज विश्व आलू दिवस ऊपर अपने बात इस करी रहा कि किसान भाई आलू की खेती करीने भी अच्छी आमदनी कमाई सके। तो अपने आज आना दिवस ऊपर किसान भाई ने आप बात करी है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा पोषण में गरीबी उन्मूलन में आलू में जो महत्व है इन्हें उजागर करने भी आप मुख्य आना दिवस ऊपर महत्व है। तो किसान भाई आना दिवस ऊपर अपने आलू की खेती अभी भी रुझान रखी सके ने आलू करी सके। किसान भाई देखो सोरा ऊपर रोज नवी नवी जानकारी अपने कया भी किसान भाई ने हद्दी में इनना अनुभव रहे इस सोरा ऊपर साझा करा हूं। तो आज भी एना सिलसिला में मारा एक किसान भाई थी बात थी थी ने एने भी आज जैविक खेती खेती में हो फायदो करे जैविक खेती में खाद जो है ये हते बनाओ एना ऊपर सारी जानकारी वेवरा बंदी आली थी। तो आज सबसे भी पहले इन भाई की बात हम लोग ने इन्हें हम भी ने पचा आ गए छोरा ऊपर संदेश है ये संदेश भी हम लोग। तो अपना सब भाई ने बात हम

0: गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रबंधक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रबंधक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाए
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराए।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका घर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: किसान भाई देखो कितनी बढ़िया जानकारी आपने ली दी है। देवी भाई वास्तव में जीवाणु खाद हते बनापुर ने किसान भाई ने इन उपयोग हते करो वास्तव में अगर जीवाणु खाद में जैविक विधि थकी अगर खेती करेंगे तो निश्चित हालांकि एक दो बार थोड़ा काटो पड़ेगा किसान भाई ने पैदावार में भी ने पर धीरे धीरे अगर शुरू थी जाएगा तो आने मान लो कम पैदावार थी लेकिन

अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 7:30 होने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: छूंवाला सगला सरोताओं ने राजू भाई रो घणो घणो राम राम और नरपत भाई तन भी राम राम सर।
1: सारा किसान भाई ने नरपत सिंह रो राम राम और साथ ही राजू भाई आपने भी राम राम
0: राम राम सा। तो देखो नरपत भाई, मैं तो अभी आयोजना रास्ता में खूब अंदर चल रहे हो और अंदर के साथ में बारिश भी आ रही, बादला गरज रहा, तो देखो मौसम

0: तो देखो मौसम इस टाइम में खराब चल रहे है, आंधी चल रही है, हवा की तेज गति। आंसू किसान भाई आई संदेश दे बचाऊंगा कि यान का खराब मौसम में आप खुद को, खुद का परिवार का बड़ा बूढ़ा टावरा को और डांडा सासरा को भी विशेष ध्यान रखे और सावधानी बरते। देखो आजकल आपदा प्रबंध विभाग से और मौसम विभाग से आपने समय रहता है वहां संदेश मिल रहा है कि मौसम खराब वालों है, आंधी आबाड़ी है, बरसात वाली है, तो बिन अपन देख और अपना बचाव का सारा उपाय करना चाहिए। तो देखो आज भी देखो मौसम खराब हो की वजह तापमान में तो थोड़ी कमी आई है, लेकिन जो अपना जो दैनिक कार्य है बम परेशानी भी आ है, तो सगड़ा किसान भाई अपना जो डांडा सांसर बांधवा की जगह है, छान छप्पर है, टीन शेड है, बन अच्छी तरह बांध समार बन सावधानी से रखे ताकि आपका जो डांडा सांसर है या खुद है कोई जनानी या पशु नहीं हुए, और साथ ही आपका जो मकान है घर है वहां को भी ध्यान रखकर दिन में आंधी अंदर या बरसात आवे तो पेड़ के नीचे भी नहीं रहे ताकि वह टूट नुकसान नहीं हुए। तो वह चीजों को भी अपने विशेष ध्यान रखना चाहिए मौसम के अनुसार, और आबारा एक दो दिन मौसम खराब रहने की संभावना है तो सगड़ा किसान भाई बहन मौसम को जो सूचना है बी के आधार पर भी मौसम में देखता हुआ आपको बचाव का सारा उपाय करे और बाढ़ यान का मौसम में नहीं निकले, कृषि कार्य करवा नहीं निकले।
1: देखो जो उनको प्रथम में भी सब तो भी आवाड़ो है जो आप कृषि कार्य जो अपने किसान भाई कहो चाहो चाहे कि इटे में अपने कृषि जो फसल है बी की तैयारी भी अपन करनी चाहिए, जैसे कि आप खरीफ की फसल की तैयारी करा कि जो बार इटे में आपला खरीफ की फसल की तैयारी करा जिसमें धान मक्का बाजरो ज्वार सोयाबीन मूंगफली उड़द मूंग तेल आदि की बुआई की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिस क्षेत्र में जो मानसून प्रारंभिक वर्षा हो चुकी है या खेती में अभी अंतिम जुताई करा जाए अभी बुआई की व्यवस्था भी अपन करनी चाहिए, और किसानों ने अपनी जो जलवायु मिट्टी और जो उपलब्ध संसाधन से विश्व उन्नत किस्मों को चयन भी करना चाहिए जो की आबाद समय में आप जो खरीफ की फसल बोबा के लिए आप तैयारी करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, और देखो भूमि की जो तैयारी है भूमि आप चूंकि फसल उत्पादन लेवा के लिए बहुत जरूरी है, तो जो जून को प्रथम सप्ताह दिन खेत की गहरी जुताई कर मिट्टी बुरबरी करनी चाहिए, मिट्टी पलट वाला हवाओं अपन जुताई करना चाहिए, और देखो मिट्टी में वायु संचार बढ़ लो, खरपतवार को नियंत्रण हो लो, और देखो आपने जो मिट्टी की खेत की जो गहराई जुताई करना पाटो लगाना और वर्षा जल संरक्षण करवा के लिए अपन मेड़बंदी भी करना चाहिए, खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था की भी अपन करनी चाहिए, जैविक खाद या गोबर की सुलेली खाद है वर्मी कम्पोस्ट है वह अपन मिट्टी में मिला देना चाहिए ताकि वह बरसात होता है सड़ गल और अपनी जो फसल है बिन मिल जाए।
1: भूमि की तैयारी साथ साथ अपन बीज को भी उपचार करना चाहिए कि जो उनका जो प्रथम सप्ताह है बीमें बीज उपचार से अपन जो बीज जनित रोग से या प्रारंभ जो कीट का प्रकोप से बीज से सुरक्षा मिल जाए के लिए अपन कहीं करना चाहिए कि अपन अंकुरित प्रतिशत बढ़ाना चाहिए बीजा में, और जो पौधा चाहे बाकी प्रारंभिक वृद्धि जिससे अच्छी होनी और जो अपने होबाला जो कीट से और पतंगा से रोग से जिस अपने बीज उपचार से फायदे मिले लो और उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी।
0: बिल्कुल, और देखो अभी जो उपयुक्त समय धान की नर्सरी तैयार करवा को जून को प्रथम सप्ताह है, तो आपा किसान भाई जो उन्नत किस्म है धान को चयन करना चाहिए और नर्सरी में बीज की बुआई करना चाहिए। धान की नर्सरी है तो जो अपना आवश्यक जो कार्य है वह ऊंचोर समतल स्थान को चयन करना चाहिए, अच्छी तरह तैयार करी गई भूमि होनी चाहिए, पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, उर्वरक की मात्रा संतुलित मात्रा में प्रयोग करनी चाहिए, रोग और कीट नियंत्रण की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, और स्वस्थ नर्सरी से पौधा स्वस्थ प्राप्त हुए जो बाद में अपन चोको उत्पादन दे सके,
1: और आगे साथ ही साथ अपन उर्वरक और खाद प्रबंधन जन बी की भी जानकारी लेनी चाहिए कि अपन की प्रकार से खाद बीज देना चाहिए, पौधा की जो स्वस्थ वृद्धि चाहिए बी के लिए अपन ने उर्वरक प्रबंधन से लाभ मिलेगी, अधिक उपजाऊ मिलेगी, और अपन जो फसल चाहिए जो अधिक उपज मिलेगी, पोषक तत्वों में जो संतुलित उपलब्धता बढ़ेगी और मिट्टी की जो गुणवत्ता से बिल्कुल सुधार हो जाए आप उर्वरक को प्रयोग कर ला तो।
0: बिल्कुल, और सिंचाई जल संरक्षण को भी अपन विशेष ध्यान रखना चाहिए, कई उपाय है जहाँ खेता की मेड़बंदी करबो, वर्षा जल ने बचाबो यानी जल संरक्षण कमाने यानी फार्म पौंड या डिग्गी वगैरह कोई भी है तालाब है तो आप अभी में सफाई कर लिया अभी को जल जो को संरक्षण है भी की मात्रा अपन बढ़ा सका भी उपाय करना चाहिए।

0: स्प्रिंकलर सिंचाई को उपयोग करना चाहिए जी, अनावश्यक जलभराव न रोकना चाहिए जी, और साथ ही साथ जो खरपतवार नियंत्रण विधि की भी अपन उपाय करना चाहिए जी, जहाँ खरपतवार नियंत्रण का उपाय है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई है, हाथ से निराई गुड़ाई कर दिया, कोई मल्चिंग को आप प्रयोग में ले लिया, और कीट रोग नियंत्रण के लिए भी रोग मुक्त बीजों का उपयोग करा, बीजोपचार करा, खेत की स्वच्छता बनाए रखा, यानी जो भी आपने खेत में अनावश्यक पेड़ पौधा है छोटा, और जो वो फसल उठा और साफ कर लेवा। तो यार आपने जून माह का प्रथम सप्ताह के बारे में जानकारी और कार्यक्रम में आगे बढ़ावा और सुना एक चौकसू लोकगीत।
1: बिल्कुल सुना चौकसू गीत।

0: हाँ तो बहुत ही चोको लोक गीत सुनाया, मारा बेड़ो लगा दीजिए पार बावड़ी का बालाजी प्रीति चौहान जी की आवाज में। तो अब चला कार्यक्रम में जानकारी की और लेर पशुओं की सामान्य देखभाल डॉक्टर जितेंद्र राजौरिया जी अपन जानकारी दे रहा है, तो मिलर लेवा जानकारी।
1: बिल्कुल दिलाओ जानकारी।
2: गाँव री हर गली में हर आंगन री शान, पशु है अपना साथी पशु है भगवान, दूध देवे खेत जोते जीवन में संवारे, आंसू ही है घर में दीपक सो उजियारू। श्रोतवा स्टूडियो में आज आपने सागे है जितेंद्र राजौरिया जी, उप निदेशक पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक माथे आप पदस्थापित हो और आज आप जी विषय माथे माने जानकारी देशो वो महत्वपूर्ण विषय है पशुओं की सामान्य देखभाल। तो साहब पशुओं की सामान्य देखभाल आप किया करा क्योंकि पशु अपना जीवन का साथी है, जीवन का हर कदम पर हर मोड़ पर आपने पशुओं की जरूरत पड़े है। तो जितेंद्र राजौरिया जी स्टूडियो में आपको खूब खूब स्वागत, राम राम सा।
3: राम राम सा।
2: तो सबसे पहले तो जो आपका विषय है कि पशुओं की सामान्य देखभाल, तो सबसे पहले तो आपना जगह काश्तकार भाई बहन है जो पशुपालक है, माने आई बताओ कि पशुओं की जो आपा सामान्य देखभाल है वह की कर करा सा।
3: तो सबसे पहले पशुपालक भाइयों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे पशुओं को हम रखते हैं, जिस स्थान पे हम हमारे पशुओं को रखते हैं उसका बाड़ा बनाते हैं या जिस भी स्थान पे हम उसको चिन्हित करते हैं कि जिस जगह पे हमारे पशु को रखा जाना चाहिए, वो हमेशा दक्षिण उत्तर की दिशा में होना चाहिए। दक्षिण उत्तर की दिशा में होने से उस जगह पे डायरेक्ट धूप नहीं आती है और वहाँ हवा भी बहुत बनी रहती है। जिस स्थान पे हम हमारे पशुओं को रखें तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान ये देना चाहिए कि अगर हम हमारे पशु को एक स्वच्छ जगह पे रखेंगे तो हमारे पशु बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे जो पशु रहते हैं उसका जो फ्लोर है यानी कि फर्श है वो बिल्कुल हमेशा कंक्रीट का बना होना चाहिए और खुरदुरा नहीं होना चाहिए। अगर वो खुरदुरा होगा तो इतना ही होना चाहिए कि वो हमारे पशु फिसले भी नहीं और जो ये गोबर और पेशाब करता है हमारा पशु वो बिल्कुल आधा इंच के ढलान से हमें उसकी फर्श बनानी चाहिए तो कि वो गंदगी आसानी से बाहर चली जाए। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो पशु हैं उनके आसपास कभी भी हमारे चीचड़े मच्छर इस तरह के जो ये हमारे छोटे जंतु होते हैं ये नहीं आने चाहिए क्योंकि अगर हम उनको रोकेंगे नहीं तो हमारे पशु बीमार पड़ सकते हैं। हमेशा पशु को जो पशुशाला बनाए तो उसमें बिल्कुल हवादार जालियां होनी चाहिए, उसके अंदर पानी का जो स्थान हो पानी की जो खेली हो वो थोड़ी सी दूर होनी चाहिए ताकि इस बहाने हमारा पशु थोड़ा सा टहल भी ले, उसको एक्सरसाइज भी मिल जाएगी और जब वो पानी पीने के लिए तीन चार बार जाएगा खेली के पास तो उसको एक्सरसाइज के साथ साथ हमेशा पेट का जो मूवमेंट है वो भी होगा और उससे उसकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो भोजन जो चारा वो खाता है वो आसानी से पच जाएगा।
2: वासा पशुओं की सामान्य देखभाल आपा की कर करा आ तो आप बहुत ही सहज और सरल शब्द में बताया। अब सर जी यहाँ घर में आपने कोई नयो टाबर जन्मे है तो का लालन पोषण की शुरुआत में टीकाकरण को बहुत महत्व या करे है, तो आपनो पशु है वो भी अपना परिवार को ही सदस्य है, तो पशुओं का मायने टीकाकरण को काई महत्व है और पशुओं का मायने टीकाकरण आपने कद कद की समय पर करवाना चाहिए।
3: पशुपालक भाइयों टीकाकरण का एक बहुत बड़ा महत्व है पशुओं के स्वास्थ्य में। अगर हम हमारे पशुओं को समय से टीके नहीं लगवाएंगे तो वो बीमार पड़ सकते हैं। जैसे खुरपका मुंहपका रोग है, गलघोंटू रोग है, ब्रुसिलोसिस रोग है, ये इतने खतरनाक रोग हैं कि अगर एक बार हमारा पशु बीमार हो जाता है तो आसानी से वो इलाज कराने पर भी ठीक नहीं होता। तो इसमें हमें जिस बात का ध्यान रखना है वह है कि बचाव हमेशा टीके से ही कर लें ताकि हमें इलाज की जरूरत ही नहीं पड़े। अब सबसे जो पहले ध्यान रखने वाली चीज है गलघोंटू की एक ऐसी बीमारी है जिसको साल में जब हमारे मानसून शुरू होता है जून के महीने में तो मई और जून के स्टार्टिंग से पहले ही हमें गलघोंटू का टीका लगवा लेना चाहिए। ये हमारे राजकीय चिकित्सालयों में उपकेंद्रों पे निःशुल्क उपलब्ध है। आपको सिर्फ उनको ये बताना है कि हमें हमारे पशुओं को गलघोंटू का टीका लगवाना है। उसी तरह से हमारे एक बहुत बड़ी बीमारी है फूड एंड माउथ डिजीज जिसको हम खुरपका मुंहपका रोग भी कहते हैं। इसका टीका साल में दो बार निःशुल्क

0: पर सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके लिए आपको मई जून और नवंबर दिसंबर में अपने नजदीक के पशु चिकित्सा केंद्र में या बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय में संपर्क करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हमारे यहाँ इतने पशु हैं ताकि उनको समय पर टीका लगाया जा सके। इसी तरह हमारे की होती है, उनको हम ब्रुसेलोसिस का टीका भी लगा देते हैं और वो सिर्फ बछड़ियों में और पाड़ियों में ही लगाया जाता है। बछड़ियों में हम लोग ऐसे लगाते हैं कि 4 से 8 महीने की अवस्था में जब वो लग जाएगा तो उनको हमेशा रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होगी और जब वो गाभिन होगी तो उनके स्वस्थ बच्चे होंगे और वो ब्रुसेला जैसे खतरनाक बीमारी से भी बच जाएंगे।
1: वासा, बहुत सुंदर बात आप बताई हो, बहुत महती जानकारी आप दिया हो। जो अपना पशुपालक भाई बहन सुन रहे हैं कि सरकार जो है, जो अपना बछड़ा बछड़ी है, जो अपना पशु है, बाकी कई टीकाकरण की निःशुल्क व्यवस्था भी उपलब्ध करा रखी है। तो सर, अब बात कर लिया आपका थोड़ी सी मौसम की, और कोई कोई दिन यहाँ को आ जावे कि गर्मी से लागे है, तो यहाँ को जो मौसम है एक महीना आपा अपना पशुओं को की कर ध्यान रखा सा।
0: देखिए साहब, अभी मौसम थोड़ा बदल रहा है, पशुओं को हमको उसको बचाव के लिए, क्योंकि खांसी बुखार जैसी बीमारियां आसानी से हो जाती है। जब दिन में पशु निकलता है तो दिन में गर्मी थोड़ी सी महसूस करता है और ऐसी कंडीशन में हम समझते हैं कि दिन का और रात का तापमान एक सा होगा, पर इसी टाइम पे हम थोड़ा मात खा जाते हैं और हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम लापरवाही ज्यादा करेंगे तो हमारे पशु बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए कृपया इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अभी मौसम बदल रहा है।
1: बात साहब, बहुत बढ़िया बात आप बताई। अब आप सामान्य देखभाल की बात कर ली और पशुओं ने बदलता मौसम में किया आप बचाव करा, टीकाकरण की बात आप कर ली। अब सर, एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप जटत है संतुलित आहार अपना पशु ने नहीं देवला, तो ऐसा बात भी पछे ही लागू हो गए कि आपने पशु संतुलित आहार खासी बिल्कुल स्वस्थ रहसी जदि आप उसको जो की तरह ध्यान रख सका। अपना पशुओं के तय संतुलित आहार आपा देवा तो की कर बाकी तय संतुलित आहार आपा तैयार कर सका हाँ, या बाजार से लिया आपा वाने संतुलित आहार देवा, या संतुलित आहार में कौन कौन सी बातों को ध्यान रखा।
0: देखो पशुपालक भाइयों, सबसे पहले हमें जो ध्यान में रखने वाली चीज है कि ज्यादातर हमें आहार वो ही देना चाहिए जो हमारे खेत में पैदा होता है। खेत में पैदा हुआ हुआ जो हमारा चारा होता है वो एक तो बिल्कुल हमारे पशुओं को स्वस्थ रखता है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है और ये हमारे पशुओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना है, हमें हरा चारा देना है, बरसीम का, ज्वार का, बाजरे का और नेपियर का। सूखा चारा हमें देना चाहिए, भूसा और पुआल का। दाना हमें मक्का का देना चाहिए, जौ का और गेहूं का चोकर देना चाहिए। प्रोटीन के लिए हमें जो खल देनी चाहिए वो सरसों, मूंगफली और सोयाबीन की हो तो ये ज्यादा अच्छी रहेगी। और इस साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इनको मिनरल मिक्सचर मिलाना चाहिए, वो हमारे राजस्थान सरकार द्वारा भी बनाया जाता है और हमारे बाजार के अंदर काफी तरह के जो हमारे खनिज हैं, मिनरल मिक्सचर्स हैं, वो अवेलेबल है। और उसके साथ साथ हमें इनको थोड़ा नमक भी देना चाहिए, तो इससे एक बैलेंस्ड राशन हो जाएगा। जब हमारा पशु एक बैलेंस्ड चारा और ये मिनरल मिक्सचर लेगा तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसका दूध का जो प्रोडक्शन है वो बना रहेगा, और प्रोडक्शन जब बना रहेगा तो हमारे जो पशुपालक भाइयों को अच्छी कमाई होगी और वो बिल्कुल सुदृढ़ बने रहेंगे।
1: वासा, संतुलित आहार की कर आपने अपना पशुओं ने देने चाहिए, बहुत महती बात आप बताई। लेकिन कई बार आप संतुलित आहार तो दे रहे हैं पर मान लो अपना जो पशु है आका पेट में कीड़ा पड़ गया या कृमि नाशक हो गया, तो संतुलित आहार देता सातर भी आपने जो पशु है कमजोर रहे है या कोई ना कोई समस्या भी के सागे हो जावे है, तो पशुओं में कृमि नाशक दवाइयाँ आपने कब देनी चाहिए और आपा किया जाना की आपने यानी कृमि नाशक दवाई देनी है।
0: देखिए, पशुओं में कृमि नाशक दवाई हर 3 महीने में देनी चाहिए। जो हमारे पशु गाभिन होते हैं उनको हम देते हैं फेनबेंडाजोल की गोलियां। जो हमारे पशु गाभिन नहीं होते हैं, मतलब जो बिल्कुल फ्री रखा होता है, उनको हम एल्बेंडाजोल भी दे सकते हैं। गाभिन पशुओं में हमें फेनबेंडाजोल की कृमिनाशक दवाई देनी चाहिए, और जो पशु गाभिन नहीं है उनके लिए हम एल्बेंडाजोल दे सकते हैं, आयरनमैक्टिन दे सकते हैं और भी 2-3 तरह की हम दवाइयां दे सकते हैं। अब हमें जो देखना ये होता है कि जैसे हमारा बछड़ा पैदा हुआ तो बछड़ा पैदा होने के 1 महीने के अंदर अंदर हमें इसको पाइपरेजिन की दवाई दे देनी चाहिए। उसके देने से उसके पेट में जो भी कीड़े होते हैं वो बाहर आ जाएंगे, और जब हम उसको कृमिनाशक दवाई दे देंगे तो वो बिल्कुल आसानी से बिल्कुल फलेगा, फूलेगा और बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। कई बार हम देखते हैं कि जब हम कृमिनाशक दवाइयां नहीं देते हैं तो उनके शरीर पे खुजली जैसे

0: परेशान हो जाते हैं, जिसको हम खोरा भी बोलते हैं, और कई जगह से बालों के जो गुच्छे हैं वो निकल जाते हैं, वहां पे सूखापन आ जाता है और ऐसे लगता है कई जगह पे गंजापन होता है। अगर हम समय पर कृमिनाशक दवा देंगे तो हमारे पशु स्वस्थ बने रहेंगे, उनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी।
1: अपना देश की जो अर्थव्यवस्था है, एक मायने पशुपालक को कई योगदान है, कई महत्व है। चालता चालता रेडियो का माध्यम से आप अपना जो श्रोता है, जो पशुपालक भाई बहन है, आप सबने आदि बताओ सा।
0: पशुपालन का हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो दूध उत्पाद हमारे को हमारे पशुओं से मिलता है वो आज हम देखें तो विश्व में एक नंबर का दूध उत्पादन हमारा देश ही करता है। दुग्ध उत्पादन का सबसे बड़ा महत्व ये है कि अगर हमारे पशुपालक इस व्यवसाय को बड़े दिमाग से करेंगे, बड़े संतुलित तरीके से करेंगे, तो हमारा जो मोटो होता है, जो हमारा सोच होता है, वो ये है कि हमें हर साल एक बछड़ी होनी चाहिए, एक बछड़ा होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारी गाय या भैंस ब्याह गई तो उसको ब्याहने के 3 महीने बाद ही उसको हमें दोबारा ज्ञापन करा देनी चाहिए, ताकि अगर 3 महीने बाद उसको हम ज्ञापन करा देंगे तो उसके 9 महीने बाद यानी कि 280 से 285 दिन का गेस्टेशन गाय का होता है, तो उसका 9 महीने बाद जब हमारा फिर उसके बछड़ा हो जाएगा तो फिर वो दोबारा दूध में आ जाएगी। इसी तरह से क्या है कि करीब हर साल हमारे बछड़ा मिलता रहेगा, तो एक तो फायदा ये होगा कि हमारे पशुपालक भाई को दूध से आमदनी बहुत अच्छी होगी, और दूसरा ये होगा कि हमारे पशुओं की संख्या भी समय से बढ़ती रहेगी। अगर हम समय पर इसका ध्यान नहीं देंगे, समय पर ज्ञापन नहीं करवाएंगे, तो हम इसको 2-3 महीने भी अगर लेट करते हैं तो ये पशुपालक भाइयों के लिए बहुत बड़ी हानि होती है, और हम हमारी अर्थव्यवस्था को इसलिए अच्छा चला पा रहे हैं क्योंकि हमारे पशुपालक भाइयों को प्रतिदिन जो दूध बेचने से पैसा आता है वो उससे अपने रोजाना के खर्चे चलाते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करते हैं, इवन जो साल भर के बचत करके इवन अपने शादी विवाह के खर्चे भी निपटाते हैं, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती से संभाले हुए हैं। पशुपालन भाई अगर हमारे इस पशुपालन को बड़े तकनीकी तरीके से करते हैं तो ये इनके लिए बहुत ही लाभ का काम है, उसके साथ साथ हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाने में भी इसका रोल और बढ़ेगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि इस पशुपालन के जो कार्य है इसको बड़ा तकनीकी रूप से करें, हर साल एक बछड़ा हो, हर साल के अंदर 10 महीने तक दूध आपको मिलता रहे, इससे आपकी आमदनी बनी रहे।
1: जितेंद्र राजौरिया, उप निदेशक पशु चिकित्सा पोली क्लिनिक 5 बत्ती जयपुर सु, आप अठे हमारा आकाशवाणी का स्टूडियो में अपना कीमती समय में से समय काडर आया, और आपना जगह श्रोता है और पशुपालक भाई बहन है, काश्तकार है, माने पशुआ की सामान्य जानकारी और कीकर आप पशुआ से लाभ कमा सका, हाँ इतनी महती जानकारी दी। उम्मीद है की सगला श्रोताओं ने लाभ पूछी, इतनी महती जानकारी देवा बताई, आपको घना मानसो धन्यवाद सा।
2: हाँ तो नरपत भाई, अभी आप जानकारी दवाया किसान भाई ने अपना डॉक्टर जितेंद्र राजौरिया जी और मधु जी जानकारी दवाया पशुओं की सामान्य देखभाल। देखो आप पशुपालन से मुनाफा जदि चोको कमा सका था कि आपन पशुओं के बारे में बाको रहन सहन खान पान और बाकी रोग बीमारियों की सामान्य सारी जानकारियों को अपन मालूम हुए तो ही आप पशुपालन को लाभ कमा सका था। तो आपने ये बहुत बढ़िया जानकारी दिया, इसके लिए आधुनिया को गणा गणा धन्यवाद, और धन्यवाद आप सुको सुको नहीं करा, एक खातिर सुखनामा चौकसो लोकगीत
3: सुनाओ सा, चौकसो लोकगीत।

0: बहुत ही चोको लोग गीत सुनिया तारी गाड़ियारे लेरा लेरा प्रीति चौहान जी के आवाज में। तो देखो आज का कार्यक्रम को टाइम पूरा बड़ा है, तो देव आज्ञा और देव इजाजत मैंने राजू ने और
1: नरपत सिंह ने
0: और करा
1: राम राम सा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैन से बोल रहे हैं। रात्रि की 8 बजे हैं और आप आनंद लीजिए फिल्म संगीत का।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म फिर वही रात से, आशा भोसले की आवाज में, कान की बोल लिखे मजरू सुल्तान फरीदी, संगीत था राहुल देव बर्मन का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी छपुर अजमेर की आमिर चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है आंधी, कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में सुनिए, गीतवत किया गुलजार ने, संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का।

आंधी फिल्म से ये प्यारा संगीत आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल गायन स्वर में। गीतबद्ध किया गुलजार ने, संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का। श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है परिंदा। कलाकार आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज में सुनिए। गाने के बोल लिखे खुर्शीद हलूरी ने, संगीत आरडी बर्मन का। सुनिएगा।

ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना फिल्म परिंदा से। आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज में गाने के बोल लिखे खुर्शीद हलूरी ने, संगीत था आरजी वर्मन का। श्रोताओं, अभी कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत। अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है घर, किशोर कुमार के स्वर में सुनिए। गाने के बोल संगीत दिया राहुल देवर्मन ने।

मूवी से ये प्यारा सा सॉन्ग आपने सुना किशोर कुमार के स्वर में। संगीत था राहुल देव बर्मन का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जब अजमेर की आमेर चैनल से। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, फिल्म है रजिया सुल्तान। कब्बन मिर्जा के स्वर में सुनिए। गाने के बोल लिखे जन्निसार अख्तर ने, संगीत निर्देशन खयाम का। सुनते जाइए फिल्म संगीत।

क्षमा चाहते हैं, किसी कारणवश हम आपको वो गाना नहीं सुनवा पा रहे। अगला गाना सुनिए दिल्ली सिक्स से, मोहित चौहान की आवाज में। गाने के बोल लिखे प्रसून जोशी ने, संगीत ए आर रहमान का।

दिल्ली सिक्स मूवी से ये सॉन्ग आपने सुना मोहित चौहान की आवाज में। गाने के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने, संगीत था एआर रहमान का। और अब सुनिए कार्यक्रम का अगला अंतिम गाना फिल्म रजिया सुल्तान से।

फिल्म रजिया सुल्तान से ये गाना आप सुन रहे थे गब्बर मिर्जा के स्वर में। गाने के बोल लिखे जन्नी सार अख्तर ने, संगीत था खय्याम का। और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत में ही खत्म होता है। नमस्कार।

आपने सुना फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आम न्यूज चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि की 8:30 होने को हैं और आपसे बस थोड़ी देर में होंगे समाचार। सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए, कृपया प्रतीक्षा कीजिएगा।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शहनवाज खान और अर्जुनन रमन का शानदार प्रदर्शन, जीते स्वर्ण पदक। एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में गरिमा और दीक्षा ने स्वर्ण पदक जीता। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड और भारत के बीच मुकाबला जारी। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का महामुकाबला गुजरात टाइटन से। चिराग शेट्टी

पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में। और भारत ने एशिया ओशोनिया चैंपियनशिप का खिताब तीसरी बार जीता। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स से, जहां कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है। अलग अलग स्पर्धाओं में उन्होंने स्वर्ण तो किसी में रजत पदक अपने नाम किए। हांगकांग में चल रही एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए कुल 3 पदक अपने नाम किए। इनमें 2 स्वर्ण 1 रजत पदक शामिल है। पुरुषों के हाई जंप में भारत के बसंत 2.20 की ऊंची कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों के लॉन्ग जंप में शहनवाज

0: ऊंची कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों के लॉन्ग जंप में शहनवाज खान ने 7.84 मीटर की लंबी कूद के साथ स्वर्ण और इसी वर्ग में जितिन अर्जुनन रमन चंद्रशेखरन ने 7.66 की कूद के साथ रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता में लगातार जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन जारी है, अच्छा प्रदर्शन जारी है। वहां हाई जंप पर पूजा ने कल राष्ट्रीय और मीट रिकॉर्ड को सुधार कर उसमें गोल्ड मेडल जीता था। वहीं उन्होंने सहाना कुमारी का नेशनल रिकॉर्ड भी कल अपने को तोड़ करके अपने नाम नया रिकॉर्ड कायम किया था। चलते हैं वियतनाम, जहां कुश्ती अंडर 17 का मुकाबला जारी है। वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के महिला वर्ग में गरिमा और दीक्षा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। सुनते हैं कैसा रहा कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: एशियाई अंडर 17 कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अलग अलग श्रेणी में कई पदक अपने नाम किए। 73 किलोग्राम वर्ग में गरिमा ने मंगोलिया की नामुन सेटसेक बेथवोल्ड को 18-6 से मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं 43 किलोग्राम वर्ग में दीक्षा ने उज्बेकिस्तान की मुखलिसा मशारी पोवा को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। 40 किलोग्राम वर्ग में पलक ने चीन की मिनिया फांग को 6-2 से पटकनी देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं 46 किलोग्राम वर्ग में अनामिका ने मंगोलिया की तनसर्मा भेटसूरी को 9-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। 53 किलोग्राम वर्ग में अक्षरा ने वियतनाम की थी होई थू बुई को 10-0 से हराया। वहीं साक्षी ने कजाकिस्तान की एरिना कोनी सोवा को 10-0 से हराकर पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया। 61 किलोग्राम वर्ग में मान्या राजपूत ने कजाकिस्तान की ही एगेरिन पोलटोबे को 10-0 से हराकर एक और कांस्य पदक भारत के लिए जीता। उधर पुरुषों के 71 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अनुज ने तुर्कमेनिस्तान के मेकान हुदे बेरेनो को 4-2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं के टीम रैंकिंग में भारत पहले, वहीं पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में भारत दूसरे स्थान पर है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भी खिलाड़ियों का लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। वहीं अभी अभी हमें ताजा जानकारी मिली है, जहां निकिता ने 39 किलोग्राम वर्ग में और अंतरा ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। सीधे लिए चलते हैं आपको इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, जहां पर महिला क्रिकेट का T20 मुकाबला जारी है। ब्रिस्टल में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा महिला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए हैं। भारत को इंग्लैंड ने 169 रन का लक्ष्य दिया है। भारत की ओर से अरुंधति रेड्डी ने 4 ओवर में 38 रन दिए। नंदनी शर्मा ने 4 ओवर में 36 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया। श्रेयंका पाटिल ने 4 ओवर में 29 रन देकर एक विकेट लिया। श्री चरणी ने 4 ओवर में 6.2 की इकोनॉमी रेट से 25 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किया। इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर, श्रेयंका पाटिल ने वापसी भी की है और 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 60 विकेट पर 188 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 150 रन ही बना सकी थी। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 69 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप से पहले यह श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईसीसी विश्व कप जो है 12 जून से इंग्लैंड में ही खेला जाना है और भारतीय टीम इस श्रृंखला में अपने कॉम्बिनेशन को आजमाना चाहेगी। अब सीधे रुख कर लेते हैं आईपीएल क्रिकेट की ओर, जहां आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में यह महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियन है, वहीं गुजरात ने भी 2022 में ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। सुनते हैं पूरे मैच का हाल।
2: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान टीम की शुरुआत निराशाजनक रही। यशस्वी जायसवाल बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। ध्रुव जुरेल भी 7 रन बनाकर कगिसो रबाडा का शिकार बने। वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 47 गेंदों का सामना करते हुए 96 रनों की शानदार पारी खेली। वैभव ने अपनी इस पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए। हालांकि रविंद्र जडेजा 35 गेंदों में 45 रन बनाकर नाबाद रहे। अंतिम ओवरों में डोनोवन पेरेरा ने आतिशी बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 345 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 गेंद में नाबाद 38 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 214 रन लगाए।

0: कोलकाता टाइटन्स की ओर से कागेसो रबाडा और जेसन होल्डर ने दो दो विकेट लिए। 215 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत शानदार रही। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 167 रन जोड़े। सुदर्शन 32 गेंदों का सामना करने के बाद 58 रन बनाकर आउट हुए। सुदर्शन लगातार दूसरी बार हिट विकेट होकर पवेलियन लौटे। वहीं गिल ने 53 गेंदों में 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 104 रन बनाए। गिल आईपीएल प्लेऑफ में शतक लगाने वाले पहले कप्तान भी बने।
1: This is something else. It really is something else. What a 100. What a performance. Leadership at its absolute best.
0: जॉश बटलर 9 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर 9 गेंदों में 16 रन बनाकर नांद्रे बर्गर का शिकार बने। राहुल तेवतिया 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाकर लौटे।
1: It's over now. Tapatia. And they'll march into Ahmedabad for the final against RCB.
0: शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले में सबसे बड़ा रन चेज करने का रिकॉर्ड भी अब गुजरात टाइटंस के नाम दर्ज हो गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के नाम था, जिन्होंने आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर में 204 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था। आईपीएल में महज तीसरा मौका रहा जब गुजरात टाइटन्स ने 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक चेज किया। मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि फाइनल में हमारा पूरा ध्यान बेहतर क्रिकेट खेलने पर होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अहमदाबाद में कल कौन सी टीम दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी। एक तरफ जहां रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पाने के इरादे से उतरेगी, वहीं शुभमन गिल की लीडरशिप में गुजरात टाइटन्स पहली बार ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स टीम।
2: अब सीधे रुख कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां पर मेंस डबल्स जोड़ी ने बेहतरीन खेल प्रदर्शन आज दिखाया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं मिक्स डबल सेमीफाइनल में भारत की जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को जापान की सायका होबारा और युची शिमिगामी से हार का सामना करना पड़ा। इस जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 16-21, 21-17, 13-21 से हराया। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और रजस प्रणय और आज तनिषा क्रिस्टो और कपिला के बाहर होने के बाद अब भारतीय प्रशंसकों की निगाहें मेंस डबल्स जोड़ी पर होंगी। अब सीधे रुख कर लेते हैं टेनिस की ओर, जहां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कल ब्राजील के जुआओ फोनसेका ने नोवाक जोकोविच को तीसरे दौर में हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। वहीं आज महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में अमांदा अनिसिमोवा और अरियाना सबालेंका अपने अपने मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगी, जबकि इगा स्वायतेक पहले ही चौथे दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। आइए जानते हैं उलटफेर के इस दौर में कौन से नए खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं।
3: फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में ये दूसरा बड़ा उलटफेर है। नोवाक जोकोविच से पहले यानिक सिनर भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। फोनसेका ने लगभग 4 घंटे 53 मिनट तक चले बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में जोकोविच को पराजित किया। शुरुआती दोनों सेट जीतकर जोकोविच मैच पर पूरी तरह से दबदबा बनाए हुए थे। इस दौरान जोकोविच कई बार थके हुए और शारीरिक रूप से परेशान नजर आए। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और निर्णायक पांचवें सेट की शुरुआत में 3-1 की अच्छी बढ़त बना ली थी। फोसेंका ने फिर से वापसी की। उन्होंने आखिरी 8 में से 6 गेम अपने नाम करते हुए रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच को 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 से पराजित किया। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में एंड्री रूबेल को हराने के बाद ये किसी टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ फोसेंका की दूसरी जीत है। जोकोविच के खिलाफ अपने पहले टूर लेवल मुकाबले में जीत हासिल करने वाले फोसेंका ने नया इतिहास रच दिया है। वो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच को हराने वाले पहले युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। फोसेंका पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के चौथे दौर में पहुंचे हैं। अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए कल उनका मुकाबला 15वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूट से होगा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
2: अभी हमें ताजा जानकारी मिली है, सबालेंका ने अपने मुकाबले में जीत दर्ज कर ली, वहीं अनिसिमोवा को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने तीसरी बार जीता एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत ने अल्ट्रा रनिंग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान के

हिरोसाकी में हुई आईएयू एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 24 घंटे दौड़ में भारत ने इतिहास रच दिया है। टीम ने न सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल अपने नाम किए बल्कि पूरे व्यक्तिगत पोडियम पर कब्जा जमाया। अमर सिंह देवंदा ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। गिनो एंटनी ने रजत और सौरभ कुमार रंजन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। तीनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय पुरुष टीम ने कुल 815.833 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये प्रदर्शन एशिया ओशिनिया स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर रहा और किसी भी एशियाई देश का आईएयू चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी माना जा रहा है। मुकाबले में जापान दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा। महिला वर्ग में भारत ने कुल 667.722 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता। जापान ने गोल्ड और ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया। भारतीय महिला टीम की ओर से तेंजिन डोलमा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 228.939 किलोमीटर दौड़ लगाई और कुल मिलाकर चौथा स्थान हासिल किया। इसी के साथ उन्होंने नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। भारत ने 2022, 24 और अब 2026 में लगातार तीसरी बार 24 घंटे अल्ट्रा रनिंग एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।

0: बात कर लेते हैं महिला हॉकी पर। जापान के काकामिगाहारा में अंडर 18 महिला हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर अपने अभियान का आगाज किया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज शिलांग के जेएन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एकीकृत आतिथ्य और खेल परिसर का उद्घाटन किया। बात कर लेते तीरंदाजी पर। स्लोवानिया के खामनिक में तीरंदाजी प्रतियोगिता के पुरुषों के रिकर्व वर्ग में भारत के सचिन गुप्ता फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका सामना कल कजाकिस्तान के इल्फत अब्दुल्लिन से होगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.aar@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे। और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि सीएलपी नेता का चयन का कार्य एआईसीसी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री

0: शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अडलेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5

0: दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी

0: प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: सुरीली धड़कन आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। जौहर महमूद इन गोवा ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का ये गाना है। मुकेश की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

घराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली।

0: जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम तो।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अनारकली फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी आपकी कसम। विविध भारती से यह है कार्यक्रम आपके लिए।

0: ज्वेल थे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविक भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध।

रंगोली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले लगभग 3,500 जिंगल्स के लिए आवाज दी। क्रिकेट विश्व कप 1999 के दौरान भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए जोश ऑफ इंडिया गीत में भी उन्होंने गाया। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। केके का कहना था कि गायक का चेहरा दिखने के बजाय उसका सुना जाना ज्यादा जरूरी है।

ये गीत काफी लोकप्रिय रहा। हालांकि बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे और भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे, जैसे कि ये गाना उन्हीं के लिए गाया गया हो।

1999 में उन्होंने अपना एक एल्बम लॉन्च किया पल, जिसका गीत यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है काफी लोकप्रिय रहा और स्कूल कॉलेज के लगभग हर फेयरवेल फंक्शंस का हिस्सा रहता था। इस गाने के बगैर कोई भी फेयरवेल फंक्शन अधूरा ही माना जाता था।

केके के चर्चित गानों की बात करें, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी काफी लोकप्रिय हुए। काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है।

उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया और उन्हें बचना ए हसीनो फिल्म के गाने खुदा जाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का स्क्रीन अवार्ड मिला।

के बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं है और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: के को पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में लाइफ में कभी कभी और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं, उन्होंने सारे मेरे जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की एक क्षमता थी और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी। और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है वो एक वॉइस क्वालिटी। उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है। और वो के

के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजस्वी कांबले की।
1: आज के फनकार।

छाया गीत प्रोग्राम थोड़ी ही देर में।

FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी 500 का मंच जानेंगे। रात्रि के 10 बजे अब पेश नजर है फिल्म संगीत।

कभी तुम्हारी याद आती है तो कभी तुम्हारे ख्वाब आते हैं। मुझे सताने के तरीके तुम्हें बेहिसाब आते हैं। इसी के साथ फिल्म संगीत का आगाज करते हैं। और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में धरती फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है। कुछ इस तरह से समाये हो मेरी सांसों में कि अब तो धड़कन भी तुम्हारी याद दिलाती है।

अब ये आपने मोहम्मद रफी की आवाज में धरती फिल्म का गीत सुना और आइए अब सुनते हैं हसरत जयपुरी कल का गीत। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी की आवाज में लव इन टोक्यो फिल्म से। तेरी धड़कन ही मेरी जिंदगी का सांस है, तेरी धड़कन ही मेरी जिंदगी का सांस है, तू मेरी मोहब्बत नहीं मेरी पूरी कायनात है।

और आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में शकील बदायूं का लिखा गीत निशाद के संगीत निर्देशन में मेरे महबूब फिल्म से। मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, मेरे सुकून का दूसरा नाम हो तुम।

मेरे महबूब, इस फिल्म का गीत हमें डॉक्टर मोहम्मद रफी की आवाज में सुना और आप सुनते हैं अगला गीत वक्त फिल्म से। आवाज मन्ना डे की है, नवानगर है साहिल लुधियानवी और मौसीकी रवि की है। होठों पर नाम है तेरा, दिल में याद है तेरी, जमाने से हमें क्या लेना, जब दुश्मन बसी है जान मेरी।

अपनी मन्नाडी की आवाज में वक्त फिल्म का गीत सुना और आइए अब सुनते हैं अदालत फिल्म का दो गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। जो दिल के करीब होते हैं वो कभी दूर नहीं होते, उनकी यादें हमेशा

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: सुन संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पांचवाड़ी के महीन चैनल से। आइए अब सुनते हैं अगली पेशकश कन्यादान फिल्म से। आवाज मोहम्मद रफी की है, नगमानगान है मेरा जयर मासी की है शंकर जयकिशन की। ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, बस तुम मेरे करीब हो।

moja.

आपने मोहम्मद रफी की आवाज में कन्यादान फिल्म का गीत सुना और आप सुनते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी की आवाज में आरजू फिल्म का नगमा। जुल्फों में तेरी मेरी जन्नत है बसी, हर गम को छुपा लेती है तेरी ये दिलकश हंसी।

आमने सामने सुन कर के तभी अपना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में सुना। और अब सुनते हैं अगली पेशकश मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की है, बोल मजरू सुल्तानपुरी की है, मधुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। सब तुझे चाहते होंगे तेरा साथ पाने के लिए, मैं बस चाहती हूँ तेरा साथ देने के लिए।

मेरे हमदम मेरे दोस्त ससुर का गीत अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना और अब सुनते हैं अनोखी अदा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। न चांद की चाहत न सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले मेरी बस यही ख्वाहिश।

गानों की आवाज फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुना और अब सुनते हैं गुलशन बावरा का लिखा गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में हाथ की सफाई फिल्म से। काश तुम पूछो मुझे क्या चाहिए, काश तुम पूछो कि मुझे क्या चाहिए, मैं पकड़ू हाथ आपका और कहूं तेरा साथ चाहिए।

0: हार्ट की सफाई फिल्म का गीत तभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। और अब सुनते हैं फिल्म संगीत के आखिरी पेशकश काला पत्थर फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है, बोल साहिर के हैं, धुन राजेश रेशम की है। अच्छा लगता है हर रात तेरे ख्यालों में खो जाना, जैसे दूर होकर भी तेरे बाहों में खो जाना।
1: सांसों में तेरी

FM 106.5 MHz पर आकाशवाणी बांसुरा का यह चैनल है। रात्रि के 11 बजने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली के

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम

0: प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सिलर मेटल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.3 MHz पर आकाशवाणी ब्रांचल का मेन चैनल है। इस समय रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ बखैर, जय हिंद।